श्रोताओं, ये भक्ति गीत था नंदिनी शरण की आवाज में। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं पुरुषोत्तम दास जलोटा को।

0: पुरुषोत्तम दास जलोटा के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें नारियल के बागानों में खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग के संदर्भ में। नारियल हमारे इन द्वीपों की मुख्य बागानी फसल है और अक्सर किसान भाइयों के पास नारियल के बागान हैं, लेकिन नारियल के इन बागानों से जितना उपज हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता और वृक्षों की जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत ही कम है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो अच्छी प्रजाति के पौधे का ना होना, ठीक प्रकार से देखभाल ना करना और सबसे बड़ी बात है कि खाद एवं उर्वरकों का समय पर प्रयोग ना करना। अगर किसान भाई समय समय पर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग नारियल के बागानों में करें तो अपने बागान से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक खाद की मात्रा के निर्धारण का सवाल है, नारियल की पौध लगाने से पहले किसान भाइयों को अपने खेत की मिट्टी की जाँच करवा लेनी चाहिए। खेत की मिट्टी की जांच से इस बात का साफ साफ पता चल जाएगा कि मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है और उसी के आधार पर खाद एवं उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण हम कर सकते हैं। वैसे छोटे पौधे को खाद कम मात्रा में देना चाहिए और जैसे जैसे पौधों की उम्र बढ़ती जाए खाद की मात्रा भी प्रतिवर्ष बढ़ाते जाना चाहिए। किसान भाइयों, जब पौधा अपनी वयस्क उम्र में पहुंच जाए तो उसके बाद खाद एवं उर्वरकों की एक निश्चित मात्रा प्रतिवर्ष पौधों को देनी चाहिए। इस प्रकार नारियल के पौधों में उर्वरक पौध लगाने के 3 माह बाद प्रयोग करें। यदि आप मई जून के महीने में पौधे लगाते हैं तो उनमें उर्वरकों का प्रयोग सितंबर अक्टूबर में करें। प्रत्येक पौधे में 110 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 225 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। उर्वरकों की इतनी ही मात्रा दूसरे वर्ष मई जून में प्रयोग करें। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में 240 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 450 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग प्रति पेड़ के हिसाब से करें। किसान भाइयों, 3 साल के नारियल के पौधों में

0: मई जून के माह में उर्वरकों की इतनी ही मात्रा का प्रयोग करें, यानी 240 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 450 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। लेकिन 3 साल के नारियल के पौधों में सितंबर अक्टूबर के माह में 400 ग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 900 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा दें। इसी प्रकार 4 साल के पौधे में 660 ग्राम यूरिया, 1250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 1320 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा देना चाहिए। तत्पश्चात प्रतिवर्ष चौथे साल वाली मात्रा का प्रयोग करते रहें। उर्वरकों के इस्तेमाल में भी कुछ एक बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए पौधे के तने से पर्याप्त दूरी छोड़कर एक नालीनुमा 10 से 15 सेंटीमीटर गहरा बेसिन बनाएं। उर्वरकों का प्रयोग इसी बेसिन में करें और बाद में मिट्टी से ढक दें। उर्वरकों का प्रयोग करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दें कि पौधे की पत्ती, तना या जड़ के सीधे संपर्क में उर्वरक न आए। पौधों में नाइट्रोजन कण कलिकायन तथा वानस्पतिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में तैयार होगा जो कि फल बनने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर फास्फोरस पौधों में फूल लगने, फलों में बीज बनने तथा समय पर परिपक्व करने में मदद करता है। पोटाश पौधों के फल की क्वालिटी को अच्छा बनाता है तथा पौधों में कीट व बीमारियों के लिए अवरोधक का काम भी करता है। इसलिए किसान भाइयों, अपने नारियल के बागानों से अधिक उपज लेने के लिए समय समय पर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग अवश्य करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा

ट्रंप ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी

0: से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. The Lok Sabha had passed the bill yesterday. Rajya Sabha is also likely to take up the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing today. In the Lok Sabha, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 will be tabled for consideration and passing. Yesterday, the proceedings of both the Houses of Parliament were once again disrupted following opposition uproar on various issues. Lok Sabha passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Rajya Sabha passed the Tribunals Reforms Bill 2026. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China.
1: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression, and more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news across the world. There have been grave violations of human rights, and I think it is time that the international community take note of what's happening there and hold that country responsible for its atrocities.
2: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ram Nath Kovind, titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles, in New Delhi today. The

0: Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th President of India. The book provides insights into the values, experiences and circumstances that shaped his journey and public service. The Securities and Exchange Board of India has relaxed the timelines for municipalities with listed municipal debt securities under its regulations to submit financial results to stock exchanges. Under the revised framework issued yesterday, listed municipalities will now have to submit half-yearly unaudited financial results within 60 days of the first half-year compared with the earlier 45-day deadline. Annual audited financial results will have to be submitted within 90 days from the end of the financial year along with the audit report against the earlier 60 days. The regulator said timelines have been relaxed considering the practical challenges faced by municipalities during data collection, interdepartmental coordination, and meeting disclosure requirements. Thousands of devotees across Kerala began offering Pitru Tharpanam, ancestral homage, in the early hours today on the auspicious occasion of Karkadiyakku Vavu. The new moon day in the Malayalam month of Karkadirakam is considered the most sacred day in the Hindu tradition to perform rites for departed souls seeking their eternal peace and spiritual liberation. The ritual started between 3:30 a.m. and 5 a.m. in most of the temples. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Gangetic West Bengal, Madhya Maharashtra and Odisha today. India continued its impressive medal-winning run at the Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. After securing 17 medals on the opening day on Monday, Indian fencers added more medals to the country's tally. Karan Singh and Sherjan Shanthimol clinched gold medals for India in the senior men's events last night. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:10 हुए हैं। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी रानी लक्ष्मी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर शुक्रवार 14 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान शनिवार 15 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान के लिए कल सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल रात 8 बजे लिटिल अंडमान से। एमवी सेंटिनल कैंपबेल के लिए कल प्रातः 7 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी रविवार 16 तारीख को रात 9 बजे कैंबल बे से। जाते व आते समय ये जलयान लिटिल अंडमान, कार्निकोबार, चौरा, तेरेसा, कचाल, नानकौरी, माकाचुआ और अफरा बे में भी रुकेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा इसकी वापसी होगी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी बाराटान स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बम्बुका

0: स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल प्रातः 6 बजे श्रीविजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी बम्बू का स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान परसों शुक्रवार 14 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जवान हमारे वो वीर सपूत हैं जो देश के लिए हर पल तैयार है। जवान हमारे वो हौसले हैं जिनके आगे दुश्मन भी घबराता है। जवान हमारे देश की शान है और हमारी आन है। जी हाँ दोस्तों, आज बातें जवान की। दोस्तों, हमारा देश सिर्फ एक देश नहीं, हमारी शान और पहचान है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मतवालों का, जिसकी मिट्टी में वीरों की कुर्बानी और तिरंगे में हमारी आन बसी है। अनेकता में एकता ही हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इस एकता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है।

दोस्तों, जब देश की मिट्टी हमें पुकारती है तो हर हिंदुस्तानी का दिल देश के लिए धड़क उठता है। हमारे वीर जवान अपने खून की हर बूंद देश के नाम कर देते हैं। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा देश के काम आए और तिरंगे की शान बढ़ाए, क्योंकि देश के लिए जीना भी गर्व है और देश के लिए मर मिटना भी गर्व है।

दोस्तों, वही है जवान खून जिसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। आज हमारी सरजमी हमें पुकार रही है, हमें आगे बढ़ने के लिए बुला रही है। ये पुकार सिर्फ सीमा पर खड़े जवानों के लिए नहीं, बल्कि देश के हर नौजवान के लिए है। क्योंकि जब देश पुकारता है तो सच्चा हिंदुस्तानी कभी पीछे नहीं हटता।

0: हिंद की सरजमीन ने पुकारा।
1: दोस्तों, सरहद पर खड़ा जवान सिर्फ देश की सीमा नहीं, हमारी आज़ादी की हिफाजत करता है। उसके हौसले से तिरंगा आसमान में शान से लहराता है। तो ऐसे वीर जवानों को सलाम, जिनकी वजह से हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं। दोस्तों, इंद्रधनुष कार्यक्रम का ये सफ़र आज शबाना के साथ बस इतना ही। होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
2: धनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से कार्यक्रम। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 328वीं कड़ी।

कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में भयानक विनाश लीला मचा रखी है। ये देख श्री राम ने सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण को सेना का भार सौंपा और शारंग धनुष संभालकर शत्रु सेना का मान मर्दन करने चले। धनुष की एक टंकार मात्र से शत्रुओं के कानों के पर्दे फट पड़ने की नौबत आ गई। फिर उन्होंने 1,00,000 बाण छोड़े जिनसे महाबली राक्षस योद्धाओं के हाथ, पैर और सिर कटने लगे। लेकिन मायावी राक्षस फिर संभल कर उठते हैं और युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। श्री राम के बाण आसुरी सेना का संहार करके तरकस में वापस लौट आते हैं। कुंभकर्ण ने भयानक सिंहनाद किया, विशाल पर्वत उखाड़कर वो वानर सेना पर फेंकने लगा। श्री राम के बाण उसका शरीर वेद कर दूसरी ओर निकल जाते हैं। उसके भीमकाय काले शरीर से बहता रक्त ऐसा दिख रहा है जैसे काजल के पर्वत से गेरुए रंग की धाराएं प्रवाहित हो रही हों। कुपित कुंभकर्ण दुगने वेग से वानर भालुओं को मारता काटता एक पर्वत लेकर श्री राम की ओर दौड़ा ही था कि उन्होंने उसकी भुजा ही काट डाली।

अभी आप रामचरितमानस गान की 328वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे भूपेंद्र तथा संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अतः मछुआरों को 14 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। जन सेवाओं को मौसम संबंधित चेतावनी दी जाती है कि आज द्वीपों के एक या दो भागों पर गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई भागों पर वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमती पूनम राय की वार्ता, विषय रहेगा शहीद स्मारक हाफरीगंज। साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे अनुराधा, अनवर और लकी अली। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9 बजे तराने सुहाने कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद निसार हुसैन खान का गायन प्रसारित किया जाएगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1348वीं कड़ी। चित्रलोक कार्यक्रम प्रसारित होगा 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु में आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर आप सुनेंगे KS राजेश्वरी द्वारा लिखित रूपक। दोपहर 1:10 पर महफिले कवाली कार्यक्रम में कवाल होंगे रशीदा खातून, हमीदा खातून और जानी बाबू। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। शाम 4 बजे हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप

डिंगे कार्निकोबार के पेरका गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत। 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 8वीं कड़ी। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा शाम 4:40 पर। 4:45 पर सुनिए कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 आप सुन सकेंगे एक ही संगीतकार द्वारा संगीतबद्ध किए फिल्मी गीतों को। बांग्ला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे नवीन मलिक से ली गई भेंट वार्ता। संध्या 6 कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर वीबी पांडे से बातचीत की जाएगी। विषय रहेगा वर्ष भर अनानास कैसे उगाए। दर्द भरे गीतों का आनंद लीजिए 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विक्रम साराभाई जन्मतिथि पर चर्चा के बाद होगा कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए 8:15 पर। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरवगान। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त 8:00 संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय है और 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि FM 100.9 MHz पर 10:00 आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को है। अब कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विधेयकपारणात् परं सदने विशेषोल्लेखानां विषयेभ्यः समयः कल्पितः यस्मिन् विधिकसदस्यैः लोकमहत्वस्य विषयाः उत्थापिताः। कार्यसमाप्त्यनन्तरं पीठासीनाधिकारिणा सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 यावत् स्थगितम्। लोकसभया केरलनाम परिवर्तनं विधेयकं पारितम्। अस्मिन् विधेयके संविधानस्य प्रथमानुसूच्यां राज्यस्य केरल इति नाम परिवर्त्य केरलम् इति कर्तुं प्रावधानमस्ति। विधेयकस्यास्य विषये भाषमाणः गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः अवोचत् यत् गतवर्षे केरलविधानसभया राज्यस्य नाम केरलमिति कर्तुं केन्द्रसर्वकाराय अनुरोधप्रस्तावः पारितः आसीत्। तेनोदीरितं यत् मलयालं भाषायां राज्यस्य नाम केरलमिति अस्ति, परं संविधाने एतत् केरल इति लिखितमासीत्। राज्यसभया राष्ट्रिय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयकमपि पारितम्। सहकारिता राज्यमन्त्री मुरलीधर मोहिल इत्यनेन उपस्थापितं विधेयकं निगमस्य गतिविधीन् औद्योगिकपण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमतिं ददाति। उभयपि विधेयके नीट विप्रतिपत्तिमधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलमध्ये चर्चां विनैव पारिते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य पूर्व राजस्थान ओडिशा प्रभृति प्रदेशेषु अतिवृष्टेः पूर्वाभासः प्रकटीकृतः। पंजाब उत्तराखण्ड गुजरात क्षेत्रेषु अपि अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। आन्ध्रप्रदेश झारखण्ड कर्णाटक प्रदेशेषु विद्युत्पात झंझावाताभ्यां सह अतिवृष्टिपरा सञ्चेतना च प्रसारिता। राष्ट्रिय राजधान्यां तावत् देहल्यां सायंकाले मेघाच्छादनेन सह मन्दवृष्टिः सम्भाव्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7 बजे हैं। जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से आज सवेरे प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 86% तथा न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 30.5 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय सवेरे 5:08 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:41। मौसम के बाद अब विमान की उड़ान संबंधी सूचना। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना।

श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमती पूनम राय की वार्ता। विषय रहेगा शहीद स्मारक हाफरीगंज, साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन सकेंगे। सुगम संगीत

के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे अनुराधा, अनवर और लकी अली। फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे। सुबह 9:00 तराने सुहाने कार्यक्रम में, सुबह 10:00 गीत का तचल कार्यक्रम में और 11:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम में।

दिन के 11 बजे आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1348वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।

0: परेशानी से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में कल स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पूरे द्वीप समूह में आज से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 पर कार्यशालाओं की श्रृंखला शुरू की जा रही है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने कल जिला कार्यालय में स्थापित पंजीकरण सेल का उद्घाटन किया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार कमान की ओर से लाइव बैंड कंसर्ट का आयोजन किया जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में कल स्वतंत्रता दिवस के समारोह की तैयारियों के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला उपायुक्त ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के सुचारू और सफल संचालन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान अंतर विभागीय समन्वय, सौंपे गए कार्यों के समयबद्ध निष्पादन, स्थल की तैयारी, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, सजावट, बैठने की व्यवस्था, जन सुविधाओं और अन्य आवश्यक लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया गया। संबंधित विभागों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने और लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्वतंत्रता दिवस की व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित थे। अंडमान निकोबार प्रशासन पूरे द्वीप समूह में जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 पर कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों, युवाओं और उभरते डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को इस राष्ट्रीय पहल में भाग लेने और द्वीप समूह की अनूठी कहानियों, संस्कृति, विरासत और पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उन 6 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिन्हें पायलट चरण के लिए चुना गया है। इस चुनौती के तहत प्रतिभागियों को वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के माई वेव्स सेक्शन के माध्यम से 1 से 3 मिनट की अवधि की मूल डिजिटल सामग्री बनाकर 31 अगस्त तक जमा करनी होगी। जिला स्तर पर 50,000 रुपये, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख और राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रविष्टियों को 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। श्री विजयपुरम के लिए विभिन्न कॉलेजों में सुबह 9:30 बजे से कार्यशाला आयोजित होगी। इसके अलावा द्वीपों के विभिन्न स्थानों पर निर्धारित तिथियों और समय पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद अध्यक्ष एम वसंता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष वी वेत्री चेलू ने कल लोक निवास में उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी

0: से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नगर पालिका परिषद द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्मार्ट सिटी व अन्य जारी परियोजनाओं तथा कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय ने कैम्बल बे में एक ट्रक के दुर्घटनावश डूब जाने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए INS बास की डाइविंग टीम ने डूबे हुए वाहन को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया, जिससे आवश्यक यात्री और कार्गो सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से ही सुन रहे हैं।
1: गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट लेकर आया है एक नई शुरुआत। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंडमान, फुल टाइम न्यूरोलॉजी एंड फुल टाइम गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक स्पेशलिस्ट सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल अंडर वन रूफ। अब माइग्रेन, लकवा, मिर्गी, चक्कर, नसों की बीमारियां, याददाश्त की समस्याएं, EEG, EMG और NCV जैसी उन्नत जांचों के साथ साथ गर्भावस्था की देखभाल, बांझपन, इनफर्टिलिटी, PCOS, महिलाओं की सभी सामान्य एवं जटिल समस्याओं का विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध है। स्वास्थ्य से समझौता न करें। विजिट हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल करें 9933219444।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने कल जिला कार्यालय में स्थापित पंजीकरण सेल का उद्घाटन किया। ये पहल नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करने तथा आम जनता के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के सुधार में लाने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों का एक हिस्सा है। ये सेल नागरिकों को आवश्यक मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करेगा, जिससे वे पंजीकरण प्रक्रियाओं को अधिक आसानी और कुशलता से पूरा कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाना, असुविधा को कम करना और नागरिकों के लिए समग्र सेवा वितरण अनुभव में सुधार लाना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार कमान की ओर से फ्लैग पॉइंट पर कल और 14 अगस्त को लाइव बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शाम 4:30 बजे से आयोजित होगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और जहाजरानी सेवा निदेशालय के जहाज़ों पर कल से 15 अगस्त तक शाम 5:45 से रोशनी की जाएगी। भारत सरकार के निर्देशानुसार सूचना साझाकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और डेटाबेस बनाए रखने के लिए दक्षिण अंडमान जिले के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत विवरण जमा करने को कहा गया है। पंजीकृत सभी सोसाइटियों, समितियों, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों, मंदिर समितियों, महिला मंडलों, चर्च, मस्जिदों और स्कूलों को वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, पैन विवरण, बैंक खाता संख्या और पदाधिकारियों की सूची 30 दिनों के भीतर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिला उपायुक्त कार्यालय के साथ पंजीकृत सभी सोसाइटियों के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए NGO पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर और 30 दिनों के भीतर इसकी पुष्टि जमा करना आवश्यक है। समग्र क्षेत्रीय केंद्र कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण वृक्षाबाद में अस्थायी नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, लेक्चरर फिजियोथेरेपी, लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी और क्लिनिकल असिस्टेंट के एक एक पद शामिल हैं। चयनित सभी उम्मीदवारों को एक मुश्त राशि दी जाएगी। अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उधर जीबी पंत अस्पताल के नर्सिंग स्कूल में नर्सिंग ट्यूटर के 3-3 पदों पर अल्पकालिक संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में 31 अगस्त को सुबह 10 बजे सीधे साक्षात्कार लिया जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन कार्य कल से 25 अगस्त तक होगा। आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को ₹50,000 प्रतिमाह दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से इन द्वीपों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य अप्रत्याशित प्राकृतिक घटनाओं के तहत पंजीकृत किसानों को बीमा कवर

0: प्रदान करना है। ये योजना कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करती है और किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करती है। द्वीप समूह के तीनों जिलों में खरीफ 2026 सीजन के लिए धान PMFBY के तहत अधिसूचित फसल है। योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को भूमि रिकॉर्ड या प्रशासन द्वारा अधिसूचित अन्य दस्तावेज 31 अगस्त तक जमा करने को कहा गया है। किसानों को अपने संबंधित क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक या सहकारी बैंक में भूमि दस्तावेजों के साथ संपर्क कर योजना के तहत अपना नामांकन कराना होगा। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर स्वयं भी पंजीकरण किया जा सकता है। नामांकन के बाद फसल को हुए किसी भी नुकसान की सूचना बीमित किसान सीधे 72 घंटों के भीतर कार्यान्वयन एजेंसी, संबंधित बैंक या स्थानीय कृषि विभाग को दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में कल स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पूरे द्वीप समूह में आज से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 पर कार्यशालाओं की श्रृंखला शुरू की जा रही है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने कल जिला कार्यालय में स्थापित पंजीकरण सेल का उद्घाटन किया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार कमान की ओर से लाइव बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का देश रागिनी कार्यक्रम में। दोस्तों, कहते हैं हम इंसानों की जिंदगी कुछ पलों की कहानी होती है, लेकिन हमारे वतन, इसकी मिट्टी और इसकी पहचान हमेशा रहती है। हम रहे या ना रहे, चाहे हमारी सांसें थम ही क्यों ना जाएं या हमारी धड़कनें रुक जाएं, बस यही दुआ हमारे हृदय से निकलती है।

हमारा प्यारा देश भारत या कहें इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि अनगिनत रंगों से सजी एक खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, अलग अलग पहनावे हैं और भिन्न रीति रिवाज है, लेकिन इन सबके बीच एक चीज बिल्कुल समान है, हमारा दिल, हमारी पहचान, हमारा लहराता तिरंगा। तभी तो हम कहते हैं इट हैपन्स ओनली इन इंडिया।

इंसान के जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, सपने होते हैं, मंजिलें होती हैं, लेकिन जब बात वतन की आती है, वतन के आगे सब कुछ न्यौछावर कर जाते हैं हम। हमारा हर कर्म, हमारी हर पहचान, सब कुछ बन जाता है हमारा वतन।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है बुधवार, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 21वीं तिथि यानी 12 अगस्त सन 2026। आज के दिन की खासियत ये है कि आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों, युवा वह नहीं जिसकी उम्र कम हो, युवा तो वो है जिसके सपनों में उड़ान हो, जिसके इरादों में जान हो, जिसके दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून हो। आज का ये दिन उन करोड़ों युवाओं के नाम है जो अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपने हौसलों से दुनिया को एक नई दिशा देने का साहस रखते हैं। युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं है बल्कि आज के सबसे बड़ी ताकत है। कांधे से कांधे मिलाए जब युवा चलते हैं, दुश्मन के दिल यूं ही धड़कते हैं।

0: जावेद अख्तर का लिखा एवं शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया हुआ यह गीत था लक्ष्य फिल्म से। आवाजें थी सोनू निगम, शंकर महादेवन और साथियों की। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए श्रीमती पूनम राय की वार्ता, विषय है शहीद स्मारक हाफरीगंज।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपको ले चलेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के एक ऐसे पवित्र स्थल पर जहां हर पत्थर, हर दीवार और हवा का हर झोंका हमें आज़ादी की कीमत याद दिलाता है। एक ऐसा स्मारक जो हमारे द्वीपों के इतिहास का

सबसे सच्चा, सबसे मौन और शायद सबसे अहम साक्ष्य है। यह स्थान है शहीद स्मारक हम्फ्रीगंज। श्री विजयपुरम से कुछ ही दूरी पर स्थित यह स्मारक केवल एक स्मारक नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत इतिहास है। सन 1857 भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति, जब देश के कोने कोने में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, हर जगह क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। लेकिन जब विद्रोह को दबा दिया गया तो हजारों देशभक्तों को काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। काला पानी यानी देश से दूर, परिवार से दूर, समुद्र से घिरे एकांत द्वीपों में अमानवीय यातनाएं। जब भी अंडमान की आज़ादी की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मन में सेल्युलर जेल का नाम आता है। निस्संदेह यह राष्ट्रीय धरोहर है, लेकिन उसके समानांतर हम्फ्रीगंज का यह स्मारक आज भी अपेक्षाकृत गुमनाम है। आज बहुत कम लोग जानते हैं कि हम्फ्रीगंज में भी कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। शहीद स्मारक उन वीरों की स्मृति में बना है जो केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विशेष रूप से इन द्वीपों की धरती के लिए लड़े। ये वे लोग थे जिन्होंने जंगल काटे, सड़कों का निर्माण किया, अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध किया और अंततः इसी धरती पर अपना जीवन न्योछावर कर दिया। आज स्मारक की दीवारों पर उन वीरों के नाम अंकित हैं जो इतिहास की किताबों में भले ना हों लेकिन इस मिट्टी के सच्चे नायक हैं। कल्पना कीजिए, हम्फ्रीगंज का मैदान, सूरज ढल रहा है, एक युवा सेनानी खड़ा है। अंग्रेज अधिकारी पूछता है आखिरी इच्छा, वह कहता है मेरी मिट्टी को भारत में मिला देना। फंदा कसता है लेकिन उसकी आवाज गूंजती है भारत माता की जय, और एक और दीप भारत माता की स्वतंत्रता की मशाल में जल उठता है। कुछ शहीद मशहूर हुए, कुछ गुमनामी में सो गए, पर फर्क बस इतना है, एक इतिहास में छपे, दूसरे इस मिट्टी में घुल गए। शहीद स्मारक हम्फ्रीगंज हमें सिखाता है नायक केवल किताबों में नहीं होते, नायक हमारे आसपास भी होते हैं। वे जिनके नाम भले ही किताबों में या हमें याद ना हो लेकिन जिनकी वजह से आज हम इस द्वीप को अपना घर कह सकते हैं। जब कोई आगंतुक शहीद स्मारक की दीवारें देखता है तो वहाँ केवल नाम नहीं दिखते, वहाँ दिखाई देता है एक पूरा संघर्ष, हर नाम के पीछे एक परिवार, एक सपना और हर नाम के पीछे एक अधूरी कहानी। कल्पना कीजिए, एक स्थानीय युवा जिनका नाम आज दीवार पर खुदा है, वह जानता है कि उसकी मौत का कोई समाचार दिल्ली या कलकत्ता तक नहीं पहुंचेगा, फिर भी वह कहता है अगर मेरा मरना मेरी धरती को आज़ाद करता है तो यह सौदा मुझे मंजूर है, और वह इतिहास की मिट्टी में समा जाता है। नाम बस पत्थरों पर नहीं, ये तो रग रग में उतर आए हैं, जो दिखते नहीं अखबारों में वही इस धरती के असली सपूत कहलाए हैं। शहीद स्मारक पर स्थित संग्रहालय इतिहास की मौन गवाही देता है। यहाँ आज भी सुरक्षित हैं पुराने हथियार, तलवारें, बंदूकें, हथकड़ियाँ और ब्रिटिश काल के अखबार। ये वस्तुएं सिर्फ संग्रह नहीं बल्कि इतिहास की मौन गवाही हैं। जब हम वो पीले पड़े अखबार देखते हैं तो समझ में आता है कि आज़ादी कोई अचानक नहीं मिली, वह हर दिन संघर्ष से छीनी गई थी। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस स्मारक को सिर्फ पर्यटन स्थल न बनाएं, बल्कि एक जीवित पाठशाला बनाएं, जहां बच्चे आकर इतिहास पढ़ें और जहां युवा समझें कि आज़ादी मुफ्त नहीं थी, और जहां हम सब मौन होकर अपने कर्तव्यों की समीक्षा करें। आज इस रेडियो मंच के माध्यम से हम उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनके नाम शहीद स्मारक हम्फ्रीगंज की दीवारों पर अंकित हैं। हम उन सभी हथियारों को नमन करते हैं जो आज शीशे में बंद हैं लेकिन कभी अत्याचार के खिलाफ उठे थे। हम उन अखबारों को नमन करते हैं जिन्होंने बलिदान की खबर

0: छापी लेकिन दर्द को शब्दों में नहीं बांध सके। इस संग्रहालय से निकलते मुझे लगा यह कोई कमरा नहीं है, यह समय की हथेली है जहां हर वस्तु अपनी कहानी के लिए खामोशी में बैठी है। यहां रखी तलवार अब वार नहीं करती, पर उसकी धार में अब भी अन्याय की चीख कैद है। ये जंजीरें आज शीशे में बंद हैं, पर कभी इन्हीं के बीच से आज़ादी का रास्ता निकला था। यह पीला पड़ा अखबार आज भी सिहर उठता है जब कोई पूछता है द्वीपों के कितने नायकों की कुर्बानी ने इन द्वीपों को मुक्त करवाया। यह संग्रहालय अतीत की कब्र नहीं, वर्तमान की चेतावनी है कि आज़ादी किसी एक दिन की घटना नहीं, बल्कि हर दिन निभाने वाली जिम्मेदारी है। जब आप यहाँ से बाहर जाओ तो सिर्फ देखकर मत जाना, कुछ सवाल साथ ले जाना, क्या हम इस बलिदान के योग्य नागरिक बन पाए? सेल्युलर जेल, जिसे हम सब जानते हैं, यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं, यह इतिहास की किताबों में है, डाक टिकटों में है, डॉक्यूमेंट्री में है, लेकिन शहीद स्मारक हम्फ्रीगंज आज भी अपनी कहानी कहने के लिए किसी श्रोता की प्रतीक्षा में है। हम्फ्रीगंज आज भी खोजे जाने की प्रतीक्षा में है। हम्फ्रीगंज इंतजार में है श्रोता की, जो ठहरे, सुने और समझे कि खामोशी भी इतिहास होती है और कुछ जगहें आवाज़ नहीं उठाती, बस इंतज़ार करती हैं। श्रोताओं, शहीद स्मारक हम्फ्रीगंज हमें स्थानीय आत्मा से जोड़ता है। यह हमें बताता है कि आज़ादी केवल बड़े नामों से नहीं आई, बल्कि छोटे छोटे अनजान पर असाधारण लोगों से आई। आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम इस स्मारक को भूलने नहीं देंगे, क्योंकि जो समाज अपने स्थानीय नायकों को भूल जाता है वह अपने भविष्य की नींव कमज़ोर कर देता है। आज हम उन सभी अनाम वीरों को हृदय से नमन करते हैं जो इस धरती पर गिरे ताकि हम खड़े रह सकें, जिन्होंने अपना आज खो दिया ताकि हमारा कल सुरक्षित हो सके, जिनकी कुर्बानी का कोई बड़ा स्मारक नहीं है लेकिन जिनकी स्मृति हम्फ्रीगंज की हर हवा में बसती है। आइए हम सब आज यह संकल्प लें कि हर वर्ष हर अवसर पर हम इन शहीदों को सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, कि हम एक बेहतर, ईमानदार और मजबूत भारत बनाएंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा। हम्फ्रीगंज की मिट्टी गवाही देती है कि देश ऐसे ही वीरों से बना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमन हम्फ्रीगंज के शहीदों को, नमन उन सभी बलिदानों को जिनसे भारत आज भी जीवित है। जय हिंद।
1: अभी आप श्रीमती पूनम राय की वार्ता सुन रहे थे। विषय था शहीद स्मारक हम्फ्रीगंज। श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम में अब सुनते हैं दिल चाहता है फिल्म का ये गीत शंकर महादेवन की आवाज में, बोल जावेद अख्तर के, धुन बनाई शंकर एहसान लॉय ने।

सलीम सुलेमान के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए चक दे इंडिया फिल्म का गीत। गीत रचना जयदीप सहानी की, स्वर दिया हेमा सरदेसाई ने।

हेमा सरदेसाई और साथियों के गाए चक दे इंडिया फिल्म के इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम से चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का

0: देश देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरज़ू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या

0: अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
2: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
3: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में JPSC JSSC परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी

0: प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
3: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं, झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ते की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट।

0: जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू मूव द केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग इन राज्यसभा टुडे टू ऑल्टर द नेम ऑफ केरला। In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sharjin Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing. More from our correspondent.
3: The Kerala Alteration of Name Bill seeks to change the name of State of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The resolution stated that while the state is known as Keralam in Malayalam, its name is recorded as Kerala in the first schedule of the Constitution. Meanwhile, the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 aims to amend the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1950. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. Dilnashi Yarzu, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ramnath Kovind titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th President of India. The book provides insights into the values, experiences and circumstances that shaped his journey and public service. Various programs are being organized across the country under Har Ghar Tiranga campaign. Vice President C.P. Radhakrishnan will flag off the Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in New Delhi in a short while. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi urged citizens to celebrate the Independence Day with honor, pride and glory and take a pledge for a developed India. In a video message posted on Instagram, Mr. Modi urged people to hoist the national flag at every home as part of the Har Ghar Tiranga, Ghar Ghar Tiranga, Har Man Tiranga campaign. Youth Affairs and Sports Minister

0: ये गजल थी अनुराधा पौडवाल और अनवर की आवाजों में। श्रोताओं, सुगम संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं गीत लकी अली की आवाज में।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप अनुराधा पौडवाल, अनवर और लकी अली की आवाजों में चंद गीतों एवं गजलों का लुत्फ ले रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं काला पत्थर की फिल्म के इस गीत से, जिसे आवाज दी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों ने। बोल साहिर के धुन बनाई राजेश रोशन ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत था तीसरी मंजिल फिल्म से। मजरूह के लिखे गीत को संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं फारूक कैसर का लिखा एवं जीएस कोहली का संगीतबद्ध किया हुआ गीत शिकारी फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की।

0: तराने सुहाने कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: हेलो, मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूं। मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करते हैं। ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूं जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते, और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई व सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन छोटी छोटी लापरवाहियों से मुझे उनके पास आने का मौका मिल जाता है। तो मैं हूं एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या?
2: आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: तराने सुहाने कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के सिलसिले को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं याराना फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना अनजान की, संगीत से सजा राजेश रोशन ने।

गुलजार का लिखा एवं आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ यह गीत था परिचय फिल्म से, स्वर किशोर कुमार का। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं मुकेश को फिल्म आनंद से। योगेश के लिखे गीत को संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने।

0: मुकेश के गाए आनंद फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं संपन्न होता है।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 9:30 हुए हैं। अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं उस्ताद निसार हुसैन खान का गाया राग ललित, जो 3 ताल में निबद्ध है।

0: अभी आप उस्ताद निशार हुसैन खान का गाया राग ललित सुन रहे थे, जो तीन ताल में निबद्ध था।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं उस्ताद निशार हुसैन खान का गायन।

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद निसार हुसैन खान का गायन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म स्वदेश से। आवाज एआर रहमान की थी, जावेद अख्तर के बोल थे। अब सुनिए खानदानी सफा खाना फिल्म का एक गीत, जिसे गाया है तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल ने। संगीत है पायल देव की, रचना शब्बीर अहमद के हैं।

अब पेश है मलाल फिल्म का एक गीत जिसे गाया है ऋत्विक तलाश कर रहे, शब्द प्रशांत इंगुले के हैं।

अब सुनते हैं अरमान मलिक का गाया एक गीत जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने, विशाल मिश्रा के संगीत से सजाया है और फिल्म का नाम है कबीर सिंह।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: Cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
3: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित

0: विभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, इस समय आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन रहे हैं, गीत गाता चल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब सुनते हैं फिल्म साहो में गुरु रंधावा और तुलसी कुमार को।

अभी आपने फिल्म छिछोरे का ये गीत सुना। प्रीतम का संगीत था और इस गीत को गाया था अमिताभ भट्टाचार्य, नक्स अजीज, अमित मिश्रा, श्री रामचंद्र और अंतरा मित्रा ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म सिफर में जुबिन नौटियाल और धावनी भानुशाली की आवाज़ों में ये गीत। धुन बनाई है भरत कमल ने, सागर प्रतीक के शब्द हैं।

अब सुनिए, श्रेया घोषाल, सुहेल सेन, सुखविंदर सिंह और शहदाब फरीदी को फिल्म हाउसफुल 4 में

में सुनिए सैटेलाइट शंकर फिल्म का एक गीत। गीत व संगीत मिथुन के हैं और इस गीत को गाया है मिथुन, अरुति सिंह और आकांक्षा ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1338

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
2: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्ही दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
2: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
1: जी।
2: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्र ध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
2: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
1: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
2: जी।
1: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान

0: में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
1: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आज़ादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
1: जी और

0: संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
1: जी, और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे?
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
1: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे, तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, है? मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
4: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
4: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
3: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
4: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
5: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
3: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
5: Is that right? You black monkey?
4: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
5: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
3: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
5: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
3: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
5: तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू स्काउंडर, यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
3: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
5: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
2: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने BA पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की।

0: लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
1: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
2: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
1: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
2: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
1: और अपने सुभाष बाबू?
2: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
3: कितनी सजा हुई?
4: नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
1: क्या हुआ सुभाष बाबू?
4: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूँ कि कोई मुर्गी चोर?
0: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
4: कौन? शिशिर?
5: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
4: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?
5: सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चला कर ले चलूंगा।
4: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
5: उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है, आप

0: कहीं बदल लीजिएगा।
1: ठीक है।
0: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी ज़ियाउद्दीन नहीं है।
1: तो फिर ठीक है, आओ चले।
0: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
3: आदाब। ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
4: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
4: खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो।
3: ये अखबार कहां गए?
4: हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
5: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
6: जय हिंद।

यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया।

0: मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए एक कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
5: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
3: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1348वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के

11:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दोबारा से। अलका याग्निक ने इस गीत को गाया है, संगीत दिया है अनु मलिक ने और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

0: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं और माइलेज भी बढ़िया है। 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
2: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म जुर्म का एक गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में। राहत इंदौरी के शब्द हैं, अनुमलिक का संगीत है।

उफ क्या जादू मोहब्बत है। इस फिल्म में सुनिए कुणाल गांजावाला और रूना को। बोल महबूब के हैं, धुन तैयार की है संदेश संदियाल ने।

आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म मैं हूं ना का एक गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, तर्ज बनाई है अनु मलिक ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
2: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
1: श्री शाह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जवाबदेही चाहिए।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। रक्षा, वित्त, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति, कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खान और इस्पात से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत, पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे आलेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में गैटलोक के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Home Minister Amit Shah has said that the government is fully prepared to discuss any issue, including the students' issue, and answer any questions raised by the members in the parliament. Speaking to reporters at the parliament premises today, Mr. Shah said that the government has nothing to hide and is ready for discussion. The Union Home Minister said the opposition may submit the notice to the Speaker by 2 p.m. for holding a discussion on the issue so that the debate can start at 3 p.m. today.
3: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे।
4: प्लीज सबमिट दैट लेटर टू द स्पीकर बाय 3 p.m. टुडे। फ्रॉम 3 p.m. टुडे अंटिल 3 p.m. टुमारो वी आर रेडी फॉर अ डिस्कशन ऑन ऑल मैटर्स। आई विल रिमेन प्रेजेंट इन द हाउस, लिसन टू एवरीवन एंड रिस्पॉन्ड टू ऑल द पॉइंट्स रेज्ड। द गवर्नमेंट हैज नथिंग टू हाइड, एवरीथिंग विल बिकम क्लियर बिफोर द पीपल ऑफ द कंट्री।
3: देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए।
2: Mr. Shah said Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has already made it very clear that the government is ready for a discussion on all aspects related to the students' protests over the NEET examination. However, Mr. Shah alleged that the opposition is not allowing the House to function.

राम की शहनाई भी है, एक छनकार की है और तलवार की है। ए हंसी रश के हंसी।

0: अरे खाई दोनों ने कसम,
1: क्या
0: अब जुदा होंगे ना हम।
1: अच्छा
0: बोलो इकरार हुए,
1: क्या
0: तो पैमान हुए,
1: क्या
0: रात बातों में करती ऐसी खैरात।

0: बोले,
1: मिल के बिछड़े तो ये दोनों से मोहब्बत ने कहा,
0: हुस्न से दिल ने कहा, प्यार से हसरत ने कहा,
2: क्या कहा
0: के बैठ

महफिल कव्वाली कार्यक्रम में अभी आपने राशिदा खातून और हामिदा खातून को सुना। आइए अब सुनते हैं जानी बाबू कव्वाल को।

श्रोताओं, अभी आप महफिले कव्वाली कार्यक्रम में राशिदा खातून, हामिदा खातून, जानी बाबू कव्वाल और यूसुफ आज़ाद कव्वाल की गाई चंद कव्वालियाँ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, ताकि आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने पसंद के गाने सुन पाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। और लिख भेजें कार्यक्रम का नाम, आपके नाम फिल्मी पैगाम, फिल्म का नाम, गीत के बोल, अपना नाम व पता ज़रूर लिखें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज का पहला पैगाम, जिसे हमें भेजा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी,

ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। ये सभी सुनना चाहते हैं मंजिल फिल्म का ये गाना।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म सोनी महिवाल से, और इस गीत के लिए हमें पैगाम भेजा है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक जी ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए अब लेते हैं फिल्म राजा साहब का एक गीत। और इस गीत के लिए हमें पैगाम भेजा है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मात्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे जी ने। तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

अगला पैगाम आया है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहिनी, पिंगावाला चौक, गोरैया जालंधर से। इन्होंने फरमाइश की है आ गले लग जा फिल्म के इस गाने के लिए।

श्रोताओं, और ये है कार्यक्रम का आखिरी पैगाम जिसे हमें भेजा है रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी ने। ये सुनना चाहते हैं चांदनी फिल्म का गाना।

दिया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम यहीं पर संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिल

0: बस भी नहीं है बल्कि वो जवाब दे ही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यूरो हमारी संवाददाता से।
1: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और

0: उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: In Tiranga Yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts. Each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीति जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की

0: खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय उड़ीसा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के दो मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावोखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए मौसम का हाल। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मछुआरों को आज से 15 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये थी मौसम की जानकारी। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन ना होकर लाइव फ़ोन आउट हो गया है। मतलब ये कि अब आप हमें फ़ोन ना करें, अब हम आपको फ़ोन करेंगे। इसलिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और नंबर दर्ज करा दें या SMS करें। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के पहले श्रोता को कॉल करते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स। हेलो,
1: नमस्कार मैडम। मैं चिरमिरी जी, नमस्ते। मैं चिरमिरी कुरासिया कालजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्र भान से बोल रहा हूँ।
0: जी, इंद्र भान जी को हमने फ़ोन लगाया है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में
1: और आपको आगामी स्वतंत्रता दिवस की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और आज मैं अपना पसंद की चीज बताता हूँ। फिल्म का नाम है क्रांति और तेलंगाना किया है। क्रांति क्रांति गायक महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, सैलेन सिंह और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को पूरे भारत श्रोताओं को आकाशवाणी विजयपुर में जुड़े सभी निर्देशक भाई बहनों को, स्टार कर्मचारी को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, हेलो श्रोता को, पूरे भारत श्रोता को डिरेक्ट करें मैडम। फोन सामने की धन्यवाद। इसी फिल्म को इसी गीत को सुनाएंगे। धन्यवाद
0: जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर चलिए देर ना करते हुए सुनते हैं आपका ये गीत।

0: हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स जी, सलमा जी लंबा लाइन श्री विजयपुरम से जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू मैडम।
0: और कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं?
0: जी मैं भी अच्छी हूँ। और बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज
1: मैडम? पूनम पिक्चर का।
0: हाँ, गाने के बोल क्या हैं?
1: जरा मेरे हम नसी थाम ले मुझे थाम ले।
0: जा मेरे हम नसी थाम ले मुझे थाम ले। अच्छा
1: जी,
0: और बताइए क्या करती हैं आप?
1: घर पे रहती है, घर का काम।
0: अच्छा ठीक है, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं।
1: जी, बहुत सारे काम रहते हैं, पेड़ लगाना, घर सजाना, बस वही सब काम मेरा।
0: हाँ, आप पेड़ लगाती हैं?
1: जी जी जी
0: और अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है तो कुछ कहना चाहती हैं?
1: नहीं मैडम, तो अच्छे से उसको बनाना चाहिए, जाना चाहिए और घर पे झंडा लगाना चाहिए मैडम,
0: जी जी
1: और घर घर में लगाना चाहिए झंडा।
0: हाँ, अभी तो हम लोग घर घर झंडा लगाते हैं,
1: जी,
0: लेकिन झंडा फहराने भी जाना चाहिए।
1: हाँ जाना भी है मैडम, ग्राउंड जाना भी है और
0: जी
1: अपना घर पे भी चढ़ाना है।
0: जी और आपके और भी कुछ शौक हैं?
1: मैडम बस यही शौक है, अच्छे से पकाना खाना मैडम, पेड़ लगाना,
0: अच्छा,
1: अच्छे
0: और
1: से बात
0: हमारा
1: करना
0: कार्यक्रम
1: सहेली
0: सुनना।
1: दोस्तों के साथ,
0: अच्छा
1: गाना सुनना।
0: जी
1: नाम बोलेगी मैडम?
0: जी बोलिए बोलिए
1: हाँ, गुलना सिंह बेगम, माजदा
0: जी।
1: बेगम, नाजिरा बेगम जी, आपका साथ भी मैडम,
0: जी बहुत
1: जितने
0: बहुत
1: सुनने वाले
0: धन्यवाद
1: सबके साथ।
0: जी। तो चलिए फिर देर नहीं करते हुए लेते हैं आपका गाना और सुनाते हैं आपके सभी दोस्तों को।
1: जी मैडम,
0: जी
1: ओके मैडम।
0: जी

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो,
0: हेलो सोहन मौर्य
1: नमस्कार मैम।
0: जी।
1: जी, मैम
0: जी नमस्ते। उत्तर प्रदेश से?
1: उत्तराखंड से मैम।
0: अच्छा, सॉरी सॉरी, उत्तराखंड से।
1: जी
0: जी,
1: जी
0: बहुत बहुत
1: मैम,
0: स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद मैम।
0: जी, और कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है मैम,
0: और बताइए, हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है?
1: अच्छा लगता है मैम आपका कार्यक्रम। जी,
0: जी,
1: और आपके
0: और
1: तरफ का मौसम कैसा है उधर का?
0: जी, हमारे यहाँ वर्षा हो रही है रुक रुक कर।
1: अच्छा, आज भी हो रही है?
0: जी, तो लेकिन
1: अच्छा,
0: अभी
1: हमारे
0: थोड़ा
1: तरफ तो बहुत
0: धूप,
1: तेज धूप निकली है।
0: हाँ अभी थोड़ी धूप निकली हुई है।
1: अच्छा,
0: जी,
1: हमारे यहाँ कल हुई थी बारिश।
0: अच्छा जी।
1: जी मैम,
0: और क्या करते हैं आप, क्या काम
1: हम
0: करते
1: कपड़े
0: हैं? कपड़े
1: कपड़े सिलते
0: सिलते
1: हैं,
0: हैं?
1: टेलर हैं।
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: मैम,
0: जी, बहुत अच्छा। ये
1: जी
0: जी, और बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में? त्रिदेव
1: मैम, तेरे देव मूवी का गाना सुना दीजिए।
0: मूवी का गाना? जी,
1: जी मैम,
0: और आपके घर में और कौन कौन है आपके साथ?
1: हमारे घर में मम्मी पापा हैं, भाई हैं।
0: जी,
1: जी
0: अच्छा, सभी एक साथ रहते हैं कि काम
1: हाँ
0: की वजह
1: जी,
0: से इधर उधर रहते हैं?
1: नहीं, सर मैम सब एक साथ रहते हैं। छोटा वाला भाई गाड़ी चलाता है, वो ही बाहर रहता है।
0: अच्छा, और आप
1: जी मैम,
0: सिलते हैं? सभी कपड़े
1: जी जेंट्स
0: सिलते हैं, लेडीज़ जेंट्स?
1: कपड़े सिलते हैं।
0: ओनली जेंट्स के? अच्छा
1: जी मैम,
0: जी, बहुत ही अच्छा काम करते हैं आप, क्योंकि बहुत कमी है यहाँ टेलर्स की, है ना? जी,
1: हमारे तरफ तो बहुत सारे हैं, ऐसा
0: अच्छा,
1: तो है
0: आपके यहाँ
1: नहीं है।
0: बहुत
1: हाँ,
0: हैं?
1: बहुत हैं,
0: अच्छा
1: लेकिन दुकानें कम है। लोग बार इंटरेस्ट नहीं रहा ना
0: अच्छा जी।
1: कपड़े सिलने में, बस कारखानों में ज्यादा करते हैं लोग बार। अपनी दुकानें कम है लोगों की, ऐसा
0: अच्छा,
1: है।
0: फिर भी अच्छी खासी इनकम हो जाती होगी आपकी?
1: हाँ, बढ़िया चलता है, घर बार ठीक चलता है, किसी के पास काम करने से ठीक है।
0: जी, आपका अपना है?
1: अपना खुद का काम है।
0: जी,
1: जी
0: तो चलिए सोहन मौर्य जी, सुनते हैं आपके पसंद
1: जी
0: का गाना।
1: बिल्कुल मैम, सुनवाइए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: जी, हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद मैम।
0: जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो मैडम।
0: जी, जॉन विलियम जी, श्री विजयपुरम
1: जी
0: नया
1: जी
0: गांव से। जी
1: जी जी
0: जी बहुत
1: मैडम
0: बहुत
1: जी
0: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: मैडम,
0: जी, आपको हमारा कार्यक्रम पसंद है?
1: बहुत सारे आपके प्रोग्राम सुन सुन रहे मैडम।
0: अच्छा, सुन रहे हैं जी। और बताइए, कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम किसी से कम नहीं, एक
0: जी
1: पिक्चर सुनने जाए, मोहम्मद रफी साहब,
0: जी जी जी अच्छा।
1: जान दे मेरा दिल, जान दे नहीं हो तुम।
0: चांदनी हो तुम। जी, और
1: मैं
0: बताइए, क्या काम करते हैं आप?
1: वन विभाग में काम कर रहा हूँ मैडम।
0: जी, वन विभाग,
1: जी
0: ये बंबू फ्लैट में।
1: हाँ जी, मैं विपलीगंज में काम कर रहा हूँ।
0: अच्छा, बिमलीगंज में। अच्छा
1: जी
0: जी, तो वहाँ पे आप क्या काम करते हैं, पेड़ पौधा लगाना या?
1: जी, मैं एक वन अधिकारी हूँ,
0: अच्छा,
1: रेंज
0: अधिकारी हैं।
1: ऑफिसर हूँ।
0: हाँ, जी।
1: मेरा काम है मोबाइल स्पॉट में जो भी
0: अच्छा
1: अपराधी कर रहे हैं उसको ढूंढना है। कोई
0: अच्छा
1: काम
0: जी
1: है,
0: जी
1: इलीगल काम कर रहा है जंगल में,
0: हाँ, जी,
1: इलीगल काम
0: मैं
1: देख
0: वन
1: रहा
0: विभाग
1: है।
0: बोले तो मैं सोच रही हूँ आप पेड़ पौधा डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, अभी
1: हाँ
0: वन
1: हाँ
0: महोत्सव जो
1: हाँ
0: चला। जी जी
1: जी, नहीं वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वन
0: हाँ
1: वन विभाग के सभी पौधा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और
0: अच्छा
1: हम लोग का काम भी यही है कि कोई इलीगल काम जंगल में नहीं होना,
0: जी
1: पेड़ सब काट रहे हैं या
0: जी
1: जंगली जानवरों को मार रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमारा

0: बातें करके बहुत ही अच्छा लगा
1: मैं भी अच्छा लगा मैडम आपसे बात करने के मैडम।
0: जी। तो चलिए फिर सुनते हैं आपके पसंद का गाना
1: ओके थैंक यू मैडम।
0: जी। धन्यवाद।

0: फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: जी बिल्कुल मैम, मैं सुनता तो हूँ, पर मुझे आपसे एक चीज पूछना थी मैम।
1: जी बोलिए।
0: ये सबसे पहले कॉल आपने लिया इंद्रभान जी का,
1: अच्छा
0: उनको मैंने सोमवार को भी सुना था मैम, ऐसे कैसे संभव हो रहा है आप
1: अच्छा
0: कुछ
1: जी
0: कॉल लगाते हैं। तो
1: अच्छा जी
0: उनका सोमवार को भी कॉल सुनाई दिया और आज भी,
1: अच्छा जी अच्छा जी
0: ये कैसे पॉसिबल
1: हाँ
0: हुआ?
1: हाँ नहीं, ये हमारे पास जो लिस्ट आया है तो शायद उसमें गड़बड़ हो गई होगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए।
0: नहीं मैम, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो श्रोताओं का ही कार्यक्रम है, पर
1: हाँ हाँ जी जी
0: जो मर्यादा, जो गरिमा है कार्यक्रम की,
1: हाँ
0: उसे
1: हाँ जी जी जी
0: सुचारू रूप से चलना चाहिए मैम।
1: हाँ हाँ जी हमारी ये खता हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिएगा।
0: नहीं, मैम आपसे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कार्यक्रम एक आरजे करेगा तो वो ठीक रहेगा, गाइडलाइन चल पाएगी,
1: जी
0: और अलग अलग आरजे रहेंगे तो फिर वो तो समस्या आएगी ही
1: जी
0: आएगी
1: जी जी जी हाँ
0: जी।
1: जी आपने
0: उसमें
1: सही
0: आपकी
1: कहा,
0: कोई गलती नहीं है।
1: हाँ जी आपने सही कहा। तो चलिए आज बताइए कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आप।
0: मैम मूवी का नाम है आई मिलन की रात,
1: अच्छा
0: उसमें एक गाना रहेगा, सावन का महीना आया है घटा से बरसा है पानी
1: अच्छा जी
0: जी।
1: जी
0: हमारे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी को डेडिकेट रहेगा,
1: हाँ
0: और हमारे मित्र रहेंगे पुरुषोत्तम कुमार जी, और हमारे दिल्ली से रहेंगे,
1: जी
0: और हमारे मित्र रहेंगे कमल जी, बिमल जी, और हमारे मित्र रहेंगे दिल्ली से ब्रह्मवीर जी,
1: हाँ जी
0: और तमाम सुनने वाले, और स्पेशली आपके लिए गाना
1: जी
0: देगी।
1: जी तो चलिए फिर सुनते हैं आपके पसंद का गाना
0: जी थैंक यू मैम।
1: जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जी, जय शिवाजी, मध्य प्रदेश से
1: जी मैम, मैं शिवलोहट, एमपी विदिशा से। जी
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे कॉल किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ।
0: जी, वैसे आप हमारा कार्यक्रम नियमित सुन

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: प्रिया फ्रेंड
0: जी, केशव जी दिल्ली से
1: जी, मैं केशव प्रजापति दिल्ली से बात कर रहा हूँ
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में
1: जी। आपका नाम?
0: जी। सुनाई दे रही मेरी आवाज़?
1: हाँ जी, मेरा काम तारा
0: हाँ जी, मेरा शुभ नाम तारा है।
1: मैम। ठीक है मैम, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि 15 आ गई इस टाइम, तो
0: जी
1: आज मेरी कॉल भी लग गई
0: जी आपको हमारी कॉल
1: जी।
0: लग गई
1: मैं
0: जी। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: मेरा दिल्ली में घर है अपना, और वहीं वही
0: अच्छा
1: मैम तो लंच टाइम
0: अच्छा जी। और हमारा कार्यक्रम
1: मैम
0: आपको कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: जी। और आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? हेलो जी, मेरी आवाज़ आ
1: मैम
0: रही है?
1: सॉन्ग है, हरी
0: हाँ हाँ
1: मैम
0: जी।
1: उपकार मेरेगा सॉन्ग है, मेरे देश की धरती सोना पे। जी
0: जी अभी 15 अगस्त आने वाली है जी, तो
1: जी

0: हम सभी के दिलों में 15 अगस्त आते ही देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। या
1: दिल्ली दिल्ली
0: ये आप
1: में तो
0: और
1: मैम
0: दिल्ली में
1: बहुत
0: ही
1: खुशी
0: रहते
1: हो गई।
0: हैं जी, तो बताइए
1: मैम कह
0: वहाँ
1: रहा हूँ
0: पे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो तो कैसे मनाते हैं आप लोग?
1: दिल्ली में तो मैम बहुत इस टाइम बहुत खुशी का माहौल है। लाल किले पे मोदी जी आते हैं, यहाँ पे झंडा फहराते हैं, तो बहुत झंडा लगा रखा है इस टाइम, तो खुशी का माहौल है। दुल्हन
0: जी, अभी तो
1: की
0: तैयारियां
1: तरह
0: चल रही होगी जी।
1: जी मैम दुल्हन की तरह सजा रखे मैम दिल्ली को। आप भी आइए
0: हाँ
1: कभी घूमने के लिए 15 अगस्त पे,
0: जी,
1: 26 जनवरी
0: जरूर
1: इक्कीस
0: मौका मिले तो हम जरूर जाएंगे देखने के लिए, है ना?
1: जी। और मैम कुछ
0: जी
1: हेलो
0: जी जी
1: मैम कुछ मैम
0: जी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है।
1: आवाज आ रही है? अब आ रही
0: हाँ
1: है ना?
0: अभी अभी आ रही है जी।
1: मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे फादर है धर्मवीर जी,
0: जी
1: उनके कुछ दोस्त है, तनुश्री जी है, रमेश प्रतापति जी है,
0: जी जी
1: अमर विमल जी है, राजेंद्र जी, गोल्डी जी, राकेश जी, पुष्कर नाथ जी, पुरुषोत्तम अंकल हैं,
0: जी
1: सुतुप्पा जी, संदीप मक्कर, लोकेंद्र, तुलसीदास जितने भी हैं, मोनिका, शिल्पा, गजराज, संगीता जी और तुलसीदास, सभी के लिए। मैम एक फादर जी से बात कर लीजिए।
0: जी
1: हेलो
0: जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार। सबसे पहले तो इस
0: जी
1: बार जो वंदे मातरम का संविधान बना दिया कि ये
0: जी
1: गाना गाया जाएगा, इस बार लाल किले पे मेरे ख्याल तो लगता है राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम का
0: वंदे
1: गीत भी
0: मातरम भी जी।
1: होगा, क्योंकि तो ये वंदे मातरम जो हमारे वीर सावरकर जी आपके सेलुलर मंदिर में रहे तो
0: जी
1: उस भाषा में नहीं बोलेंगे, जेल नहीं बोलेंगे, वो उनके लिए हमारा मंदिर है। वो
0: जी जी
1: हमारा जब भी जाना होगा परिवार का तो उस मंदिर में हम अवश्य जाएंगे,
0: जी
1: आपके विजयपुरम में जो
0: जी
1: है।
0: जी बहुत ही सुंदर आपने ये शब्द इस्तेमाल किया है, मंदिर, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं
1: जी
0: जी।
1: जो आज आज हमारा जो हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं,
0: जी
1: उन हमारे ऐसे वीर लोग थे जिन्होंने हमें आज आजादी की हवा महसूस होने दी। उन्होंने घुटन में अपनी जिंदगी बिताई है, कहते हैं सेलुलर जेल ऐसी जगह थी कि एक बार इंसान वहां जाएगा दोबारा
0: जीवन
1: उसका
0: को
1: नाम
0: वहां
1: नहीं
0: से
1: लेगा।
0: निकलना मुश्किल है क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, समुद्र ही समुद्र है
1: नहीं
0: जी।
1: उनकी जो सेलुलर जेल थी ना, छोटी सी कोठरी थी,
0: हाँ हाँ जी जी
1: लोग
0: वो भी
1: सिर्फ
0: है।
1: उसी को ही देखने जाते हैं, और इसके अलावा वहाँ जो जो रहने की व्यवस्था थी, 20 साल तक वो वहाँ रहे, और उनके
0: जी जी
1: अपने ही सगे भाई उनके बगल वाली कोठरी में थे। 10 साल के बाद उनको पता चला कि मेरा भाई भी इसी जगह
0: इसी कोठरी में
1: पे
0: है
1: आया
0: जी।
1: हुआ है।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ क्योंकि
1: ऐसे
0: वो जो
1: क्रांतिकारी
0: कोठरी बना
1: की
0: हुआ है वो एक दूसरे को वहाँ देख नहीं पाते। जी
1: यही यही चीज हमारे बच्चों को आज के समय के जो आने अपने छोटे बच्चे हैं और उनको बताना चाहिए कि ये
0: जी
1: जो
0: जी
1: आजादी का पर्व है।
0: हाँ जी जी हेलो हेलो, शायद लाइन कट गई है जी। तो चलिए हम सुनते हैं इनके पास, इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है।

0: The person you're speaking with has put your...
1: Hello. Hello, dear friends.
2: जी मैम.
1: जी, केवल सिंह जी हिमाचल प्रदेश से.
2: मैं जिला उधमपुर.
1: अच्छा, जिला
2: इधर जम्मू कश्मीर.
1: अच्छा, जम्मू कश्मीर पड़ता है. जी, माफ
2: कीजिए. जी जी मैम.
1: जी
2: मैम.
1: और कैसे हैं आप?
2: ठीक है मैम, बढ़िया. आप सुनाएं.
1: जी, हम भी बहुत अच्छे हैं. और जम्मू का हाल बताइए.
2: जम्मू में मैम आज तो मौसम ठीक है, धूप खिली हुई है, लेकिन कल शाम बारिश हुई थी.
1: अच्छा
2: जी मैम.
1: और अभी तो, स्वतंत्रता दिवस आने वाली है, तो वहाँ की क्या माहौल है?
2: माहौल ठीक है मैम. इधर तो वो हर कार तिरंगा की जो रैलियाँ निकल रही हैं,
1: जी जी,
2: और सभी लोग खुशी के माहौल में हैं. हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन ही हमें आज़ादी मिली थी. तो उसकी उसी उन कुर्बानियों को ही याद रखते हुए बड़ी खुशियां वगैरह मना रहे हैं लोग, और तिरंगे ही तिरंगे लोगों के हाथों में देखता हूँ मैं.
1: जी
2: मैम.
1: और क्या करते हैं?
2: हम खेती बाड़ी का ही काम करते हैं मैम.
1: तो अभी आपने कुछ उगाया है?
2: हाँ, हमारे खेतों में इस टाइम लगा धान में लगी है, मक्की लगी है.
1: अच्छा जी.
2: बाकी भिंडी लगी है, कुछ घिया वगैरह सब्जी है.
1: अच्छा
2: जी मैम.
1: जी, तो आप अपने ही खेतों से सब्जी वगैरह उगा ही लेते हैं?
2: जी जी मैम.
1: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके. और बताइए, आज कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है मैम रंग, और गाने के बोल हैं तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है.
1: जी, बहुत ही सुंदर गीत है.
2: तो बाकी तो कुछ मित्रों को याद करना चाहता हूँ मैं.
1: जी, जरूर.
2: जम्मू कश्मीर जिला डोडा से.

0: हैं पंछीराम पुष्करनाथ और रिंकू देवी जी। हिमाचल प्रदेश से हैं, शिमला से हैं
1: जी
0: राकेश कुमार जी,
1: जी
0: और जिला कांगड़ा से हैं गोल्डी जी, और भगवान सिंह परमार जी हैं, और त्रिपुरा से हैं अविनाश भैया, और राजस्थान से हैं पूर्ण सिंह
1: जी तो
0: जी।
1: चलिए फिर सुनते हैं आपके पसंद का, आप सभी के दोस्तों के साथ ये गीत।
0: थैंक यू मैम।
1: जी।

शुदम, इसी के साथ ही आज का हमारा हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

100.9 MHz पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम, यूं ही गाते रहो।

आज के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महक एक ऐसा सुगंधित एहसास है जो हमारे मन को प्रसन्न कर देता है। यह फूलों, मिट्टी, बारिश, इत्र, पेड़ों और वातावरण से मिलकर बनने वाली वह सुगंध है जो दिल और दिमाग दोनों को शांति देती है। महक सिर्फ एक खुशबू नहीं बल्कि भावनाओं का एक पुल है जो हमें यादों से जोड़ती है।

0: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार की महक दी है। फूलों की महक जो वातावरण को सुगंधित करती है, मिट्टी की महक जो बारिश के बाद मन को ताजगी देती है, पेड़ों और पत्तों की महक जो जंगल में भी शांति का एहसास कराती है, इत्र की खुशबू जो व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। हर महक की अपनी अपनी पहचान होती है और हर किसी के लिए एक खास याद से जुड़ जाती है। वैसे ही ये प्यार की महक है।

महक हमारे मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालती है। एक अच्छी महक मूड को खुश कर देती है, तनाव कम करती है और ऊर्जा भर देती है। यही कारण है कि लोग अपने घर में फूल, अगरबत्ती या इत्र का उपयोग करते हैं। कुछ महक हमारे बचपन, किसी प्रिय व्यक्ति या किसी खास जगह की याद दिलाती है।

श्रोताओं, महक प्रकृति का सुंदर उपहार है। यह हमारे जीवन में ताजगी, खुशी और सकारात्मकता भरती है। महक को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं और यही इसकी सबसे खास खूबी है।

दोस्तों, जब हम हरे भरे पेड़ों, खिलते फूलों और बहती नदियों को देखते हैं तो हमारा मन खुशी से झूम उठता है। कवि और चित्रकारों को अपनी रचनाओं के लिए प्रेरणा प्रकृति से ही प्राप्त होती है।

0: जा सकता है और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं। सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूं कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहां मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं नौवीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
2: बिल्कुल,
1: कि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सायानी साहब को मैं

0: मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा। फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन आदमी काम का। लेकिन वो छह महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो छह महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने छह महीने से उंगलियों पे गिने, छह महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि छह महीने ऐसे नहीं होता है, छह महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने छह महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
0: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो छह महीना अगर काउंट करेंगे तो वो सात महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन छह महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं? मैंने कहा हाँ। तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी छह महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई मुल्क के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया
0: जी,
1: है ना? और ये यात्रा मुंबई तक कैसे आई?
0: रेडियो से रेडियो,
1: रेडियो से रेडियो।
0: हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहां कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे बम्बई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहां से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा डेढ़ घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के सीडी पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद में उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है, और हर 1 मई के 1 मई में उनको कॉल किया करता
1: हूं। क्या बात है, मैं भी
0: तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जब फोन कटा मैंने देखा मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे

0: रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा, जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं, तो तू प्यार का सागर है, सीमा शंकर जयकिशन।
1: हाँ बिल्कुल,
0: शैलेंद्र।
1: हाँ, सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: आओ राइटर से मिलो, वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम, राजेश देवराज हेड राइटर होते थे, तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा, मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं यहाँ। मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे, बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई, उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा, किकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो मैं कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में, हम मिलते रहे दो तीन चार बार मिले उसके बाद, अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए। तो वो सब करके मैं यहां से गया और मुझे लगा कि मुझे बंबई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेना चाहिए बैंगलोर से, तो बैग पैक किए, यहां एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहां से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी, तो मैं वो छोड़ के यहां आ गया और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूं। तो रेडियो में फिर बहुत सारी मजेदार चीजें हुई, सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था, वो जो सारी चीजें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा और मेरा पेट भर गया उस चीज से 4-5 महीने में, मैंने कहा अगर यही करना है तो क्या मजा नहीं आएगा। हाँ ये वही सर्कल वाली बात होगी ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा, मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर, और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका, उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, हाँ, वेंकटेश ने,
1: वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर,
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर, तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो, तो रैंडमली आया, बोले कुछ खाया तूने, मैंने कहा मैंने खाया, तो सैंडविच खाते हैं चल, उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है, तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार, फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहता है, मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी, उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है, तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया, उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे हैं
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तू यहाँ क्या करने आया, अगर तेरा ये सपना है तो जा वहां पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी, हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है, मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर, तो ये भी था कि यार ये मैं पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है, तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है, तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू, तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं, तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक 2-3 एपिसोड दिए, उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था, तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज में खुद ही रिकॉर्ड किया, और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में, और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस, मैंने कहा ये प्रोमो हो गया, इतनी जल्दी, मैंने कहा मुझे आना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अगर मैं यहां नहीं आऊंगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज किसकी है, तो मैंने कहा मेरी है, उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है, तो मैंने कहा मेरी है, अरे ठीक है तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया, बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर यह था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था, और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे, किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए. बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुली फालतू.
1: बिल्कुल.
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैं रेडियो में कर रहा था. मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री करवर के कुछ एक
1: बना रहे,
0: 10-12 मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे संडे. तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं. तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा. मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहां आया. यहां आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी. तो मैं यहां आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बंबई में. विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया. वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो किया करते थे, तो उन्होंने बोला

0: लगता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए और वो किया मैंने, वो करीब एक डेढ़ साल किया मैंने।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहां एडिट कर, यहां भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहां प्रोमो करने के लिए गया, वहां बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं लिखता हूं, मैं लिख के दूं। तब तक मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
0: ऐसी बोल दिया।
1: हाँ, मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूं, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
0: ओके।
1: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
0: वाह वाह।
1: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 2 शोज है, मैं आता हूं आपको पिच करता हूं। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जदोजहद में गुजरने वाले हैं। ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था। तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया। कि तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विद अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूं, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
0: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे प्रॉपर, वही शो की बात हो रही है,
1: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के 2 शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये 2 मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था।
0: Right.
1: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें।

0: तो फिर तो मैं लालची हूं, मैं सब करना चाहता था. मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा. और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई. तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा. तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया. तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म.
1: बिल्कुल बिल्कुल. हाँ.
0: उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है. मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के फुटेज लेके. तो उन्होंने बोला तुमको पता है? तो मैंने मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म. ऐसे दो तीन बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की. वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया. वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको,
0: इसको कुछ तो पता है. अगर सब पता नहीं भी है तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे. धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था. उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं. तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया. पहले भी देखी हुई थी. और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे. तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें कि कैसे टिकर आएगा. टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बच्चे थे इंडिया, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं. तो हमने ऐसे काउंट डाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते हैं ग्राफिक्स में.
1: अच्छा.
0: तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे. और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले. जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था. तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो समुराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, समुराई कला बोलते. तो मैंने कहा समुराई कला कैसे सीखें, रैपिडेक्स समुराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे एड. हाँ तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताएगी. ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे.
1: हाँ,
0: तो एक फेक एड आएगा, उसके बाद असली एड
1: आएगा.
0: हाँ, तो उनको आइडिया जम गया. वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था. तो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में. 26 एपिसोड हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने,
0: इन आउट तो 200 एड्स हमने बनाए. तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई. फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, वीएफएक्स भी किया. मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है. तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगाओ. और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत यू नो रेस्पेक्ट तो है ही. लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला. और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि वो भी मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं. मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके. तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना.
1: बिल्कुल.
0: वो शो बनता रहा 1.5 साल तक. तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूं और उस सेट पे ज्यादा रहा हूं. तो इस तरीके से ये शो बना. ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए. तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं.
1: ओहो.
0: हाँ, मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था. और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीजों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए. क्योंकि मैं देखता हूं हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और कानून
1: तो गांव से छूट जाते हैं,
0: लूज बाद में ऐसे ऐसे छूटते हैं जो बाद में अपना मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं. तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें.
1: बिल्कुल.
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहे. तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए. जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया. तो 2 शोज हमने किए. उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में. ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था. तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है. तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है.

0: जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था, और दो एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीजें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने।
0: हाँ,
1: बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंका।
0: मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बोल बेबी बोल,
1: वो सुनते हैं
0: जी।
2: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स, आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस, यू विल your feet and groove the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
3: No!
2: Samba?
3: No!
2: Rumba?
3: No!
2: Samba?
3: No!
2: Tequila?
3: No!
2: Tango?
3: No!
2: Charleston?
3: No!
2: Polka?
3: No!
2: No!
3: No!

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल रही थी और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था। कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है।
0: वाह वाह।
1: तो वो मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहां मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो।
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग किए, और जो चीज मुझे वहां से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना।
0: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
1: बहुत ज्यादा। वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। वो 6:01 पे कभी नहीं आए,
0: बिल्कुल,
1: इतने महीनों में। दूसरी चीज है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं, तो मुझे 10वां टेक तक मिला है। उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं, आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, 6 टेक, सेकंड टेक, फर्स्ट टेक। जब डबिंग खत्म हुई, उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे। तो उतना डिटेल रखना।

0: चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
1: वाह वाह वाह वाह, वरना
0: सब सब सब वालों को बता देंगे, सब लोग रोमन सब रोमन में पढ़ते हैं
1: जी।
0: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहां एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले दो दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से यही हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं है क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था। लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पर कोशिश करता हूं या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लिशे है, सब हजार बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो वन ऑन वन पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो किया हमने, अस्सा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पर हमें रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया। मतलब बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा तो लोगों के बीच में वो एक उत्साह बना रहेगा माहिष्मती के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो .11 बजे आए, उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है तो उन्होंने बोला इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूं। उन्होंने अपने फोन पे मुझे अमर चित्रकथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो अमर चित्रकथा है, उसके 2 संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजामौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी, उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: में कहीं कहीं काम आती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स कहीं छूट रही है मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला, हमने वो शो किया, पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीजें हुई, एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया। मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज थी कि मैंने मेरे जो हीरोज हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजामौली साहब के साथ काम कर लिया, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया। तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो।
1: बिल्कुल।
0: शोले कर ली थी तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब नहीं मिलता था। तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में दौड़ता रहूंगा। तो मैंने लाइव एक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया। मैं निर्देशक बनना चाहता था तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूंगा। इस बीच मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो। वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक मिडिल क्लास ह्यूमर था, मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद है तो ये उस स्पेस में था और समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था। और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला और

0: मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि, और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते मैं वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: इस सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें।
1: ठीक है। इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, अनलिमिटेड शो है, 5 एपिसोड का, वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा, मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी खत्म किए करके जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है, 1 नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूं इस साल मैं 2 किताबें और करूं।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बनके रेडी है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो।
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: मुकद्दर का सिकंदर।
1: बिल्कुल,
0: टाइटल ट्रैक कल्याण जी आनंद जी इंदिवर।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।

0: आलू, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा. लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है. एक साइकिल है, चक्र है. तो ये खत्म होता है और फिर आता है. तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनानी शुरू की हैं. हम भी उनमें से एक हैं. हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है. तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल. तो वो कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है. और एक दूसरी चीज जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में. और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है. अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में. तो करीब 40 साल लगे है ना. स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है. तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब. तो अब दो चीजें हैं. एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं.
0: बिल्कुल,
1: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में. बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने. डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म. एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है. तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है. लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है. चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिनपे कुछ बन सकता है. तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनपे मुझे लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी. मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी.
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया.
1: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है. मुझे लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है. जो इवॉल्व वो हो रहा है. बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का दौर है.
0: बिल्कुल. तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी. आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की.
1: शुक्रिया यूनुस भाई. मैं जैसा कह रहा हूं कि मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूं. आपसे मिलना भी होता रहा है. मैं यहां आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है. तो मेरे लिए घर वापसी है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. हाँ,
1: और क्या कहूं मैं.
0: बहुत बहुत शुक्रिया. फिर मिलते हैं
1: जी.

आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के मेहमान।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा हुजूर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। इस दुनिया में अगर शब्द ना होते तो हम कैसे करते अपनी मोहब्बत का इजहार। शायद तब आंखें खत लिखती, मुस्कानें दस्तखत करती और खामोशियां हर अनकही बात का अर्थ बन जाती। शायद किसी का ठहर जाना, किसी के लिए किसी का लौट लौट कर देखना ही प्रेम का सबसे सच्चा वादा होता है।

मोहब्बत शब्दों की मोहताज नहीं होती, वो तो दिल की भाषा है, जिसे महसूस किया जाता है, कहा नहीं जाता। शब्द तो बस उसे आवाज देते हैं, वरना प्रेम तो हर धड़कन में चुपचाप अपना नाम लिखता रहता है। प्रेम के सफे पर कभी इंतजार की घड़ी होती है, कभी बेकरारी, कभी मुस्कान के मन के गजब है मोहब्बत की दास्तां।

कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिन्हें किसी का नाम या परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती। वे चुपचाप मन के देहरे पर आकर ठहर जाते हैं। रोज की सहज मुलाकात, मुस्कान में घुली कुछ मधुर बातें और मौन में धड़कते अनकहे एहसास धीरे धीरे मन के आंगन में एक ऐसा अपनापन रच देते हैं जो किसी रिश्ते के नाम से नहीं बल्कि दिल की अनुभूति से पहचाना जाता है। तब लगता है कुछ लोग जीवन में केवल मिलने नहीं आते, वे महज एक एहसास बनकर आते हैं।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। वक्त की सीढ़ी पर कतरा कतरा लम्हे गुजर रहे हैं, इंतजार की बोझिल घड़ियां ठिठक गई हैं, दिल ख्यालों से बहलने को राजी नहीं, सारे गम भुलाने की कोशिश में दिल गुनगुना रहा है तन्हाई और इंतजार का नगमा। रात के सितार पर उदासी और इंतजार की सुर लहरियां बज रही हैं एक साथ।

पलकों पर ठहरा है समंदर, बूंदे बहुत ढेर सारी, जज्बात की लहरों से दिल बेचैन है, जगमगाते सितारे थक कर सो गए हैं, आसमान का रंग नीले से सिलेटी हो चला है, धरती सन्नाटे की चादर ओढ़े किसी आहट का इंतजार कर रही है, वो अपने गम के शामियाने पर मोहब्बत के फूल काट रही है और गा रही है इंतजार का ये नगमा।

तुम्ही ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्ही ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था, और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोला था, और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए थे।

मोम की गुड़िया फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और आनंद बख्शी का लिखा। आवाजें थी लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की। आनंद बख्शी की रचना आपने सुनी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। मोम की गुड़िया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।

वारंट फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को सुर में ढाला राहुल देव बर्मन ने। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से, और ये कार्यक्रम जारी रहेगा शाम 6:05 से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारी राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगुन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के दो मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी चार मॉड्यूल पूरे किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा

0: स्थिति आप कल्पना कर सकते हैं, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं को वैश्विक बाजार में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने तराने नए पुराने इस प्रोग्राम का बाकी हिस्सा।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

योगेश के बोलों को सुर में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार का गाया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मंजिल से। फिल्म मशाल, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें।

जावेद अख्तर का लिखा ये गीत आप सुन रहे हैं। संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में मशाल फिल्म का ये गीत है आज के तराने नए पुराने कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

ये विविध भारती है, झरोका में लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। ठीक 6:35 पर आप सुन सकेंगे ये कार्यक्रम। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे श्रृंखला वर्षा चौमासा की 12वीं कड़ी। कलाकार हैं गायिका शुभा मुदगल, प्रस्तुति कांचन प्रकाश, संगीत की। 7:00 आप सुनेंगे जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग। 8:00 हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे प्रहसन आंधी, लेखक और निर्देशक ब्रिंग तुपकरी। 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक और 9:00 होगा कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम श्रोताओं केंद्रित है अभिनेत्री श्रीदेवी पर। रात 10:00 आप सुन सकेंगे छाया गीत और 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। और अब लीजिए सुनिए हमारे कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। 6:35 पर श्री रामचरित मानस का भाग 279 आपको सुनवाएंगे। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला वर्षा चौमासा की 13वीं कड़ी। कलाकार हैं गायिका शुभा मुदगल। 7:00 सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैरा ही प्यार के। 8:15 पर होगा कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री वैजयंती माला पर। दिन में 10:00 पिटारा में आप सुनेंगे आज के मेहमान लेखक और निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग। 12:00 हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे। 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। 1:00 सुनिएगा सुरीला सफर। 2:00 होगा कार्यक्रम त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3:00 आप सुनेंगे सखी सहेली और शाम 4:00 पिटारा लाएगा आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 5:00

0: 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने और 6:05 से यही कार्यक्रम फिर से जारी रहेगा। 6:30 पर सुनिएगा झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रमों की रूपरेखा। 6:35 पर संध्या रंजन आप सुनेंगे। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला वर्षा चौमासा आपको सुनवाएंगे। इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी आप सुन सकेंगे। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल, प्रस्तुति कंचन प्रकाश। संगीत की 7:00 सुनेंगे जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम में सुनवाएंगे साउंड इंजीनियर और वॉइस आर्टिस्ट रूपाली सुबे से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। रात 8:00 हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा झलकी तमाशा। लेखक और निर्देशक गुरमीत रामल मीत। 8:15 पर चित्रलोक और 9:00 आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा वैजयंती माला पर। 10:00 आप सुनेंगे छाया गीत और 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। झरोका में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुने कार्यक्रम संध्या रंजन।
1: बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला।

फिल्म खानदान का ये भक्ति गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ों में, राजेंद्र कृष्ण का लिखा, रवि ने इसे स्वरबद्ध किया। संध्या रंजन कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, और कल की कड़ी में हमने शुभाजीत से सुनी थी कजरी। और जैसा मैंने कहा था कि एक और कजरी सुनने का मन है तो शुभाजी आज फिर से कजरी हो जाए।
1: जी जरूर, और कुछ ऐसी कजरी सुनाना चाहूंगी आपको और उनके बारे में बात भी करना चाहूंगी जो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि से जुड़ी हुई बातें हैं। काशी के एक विख्यात साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी,
0: इनको और इनके नाम को कौन नहीं जानता।
1: तो उनकी बहुत सारी कजरी जो है वो उन्होंने प्रकाशित भी की और हमने उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सुनी है। जैसे एक बहुत उनकी जानी मानी कजरी, उनकी लिखी हुई, कहनवा मानो हो दिल जानी, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी है। और विख्यात गायिका से श्रीमती गिरजा देवी जी, उनसे भी हमें सुनने को मिलती हैं ये चीजें। तो भारतेंदु जी ने तो बहुत कुछ लिखा और हर ऋतु के लिए लिखा, हर उत्सव के लिए लिखा, दीपावली के लिए भी लिखा सब, लेकिन जो कजरी का उनका संग्रह है वो कुछ विशेष है। और वो उनके मित्र और अन्य जो साहित्यकार थे उनके साथ वो एक मैगजीन भी निकालते थे जिसमें कि प्रेम घन इत्यादि जो लोग थे उनकी भी कजरियां प्रकाशित होती थी और उनकी भारतेंदु बाबू की स्वयं जो कजरियां थी वो भी प्रकाशित होती हैं।
0: शुभा जी, जैसा आपने कल बताया कि कजरी के दंगल होते थे
1: जी,
0: तो उसके लिए भी तो ये चीज चाहिए किसे गाया जाए।
1: जी बिल्कुल,
0: तो तब ये जो प्रचलन था
1: जी
0: कि कजरी के अखाड़े, कजरी का दंगल, एक दल सुनाएगा फिर दूसरा दल सुनाएगा, तो इसमें कुछ और शब्दगत खासियत भी होगी, विशेषता होगी जो आप आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही कजरी सुनाने जा रही हैं।
1: जी आज उन्हीं की कजरी सुनाऊंगी
0: तो।
1: और वैसे तो उनकी एक बहुत ही मतलब प्रख्यात कजरी है जो कि झूले के बारे में है कि राधे झूलन पधारो झुकी।

0: धारो झुकी आई बदरा, वो बहुत प्रचलित है, लेकिन मुझे लगा कि एक कुछ दूसरी कजरी सुनाई जाए आपको भारतेंदु बाबू की। तो बिन सांवरे पियरवा जीय की जरन न जाए। वैसे तो भारतेंदु बाबू की जो ये पंक्तियां मिलती हैं वो केवल चार पंक्तियां हैं उनकी इस कजरी में, प्यारी झूलन पधारो झुकी आए बदरा।
1: वो कैसे हैं?
0: एक सेकंड आपको पूरी रचना सुनाती हूँ, फिर उसके बाद क्या हुआ है वो भी देखते हैं। तो ओढ़ो सुरख चुनरी तापे श्याम चदरा, ये लिखते हैं वो, देखो बिजुरी चमके बरसे अदरा, हरिचंद तुम बिन पिय अति कदरा। ये जो चार पंक्तियां हैं ये उनकी उनके संग्रह में मिलती हैं। लेकिन अब जैसे वृंदावन यदि आप जाएं या ब्रज का जो ब्रज में अगर आप जाएं तो ब्रज भाषा की में भी ये बहुत प्रचलित है, उस एरिया में भी बहुत प्रचलित है ये, और वहां पाठभेद और पाठांतर काफी मिलता है। तो मंदिरों में जो कजरी गाई जाती है वो कुछ इस प्रकार की है, जिसमें कि पहली जो पंक्ति है वो तो भारतेंदु बाबू वाली ही है, लेकिन उसके बाद काफी कुछ अलग हो गया है वो इस प्रकार।

0: कदरा, ऐसे करके और भी अंतरे जोड़ दिए गए हैं
1: जी।
0: तो ये पाठ भेद आ गया है
1: जी। लेकिन आज जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कजरी आप सुना रही हैं वो ये नहीं है कुछ?
0: नहीं, ये तो बहुत सुनने में आती है, मुझे लगा कि एक दूसरी कजरी आपको सुनाऊं। बिन सांवरे पियरवा जिय की जरन न जाए, जिय नहीं बहलत प्राण पिया बिन, कीने लाख उपाय, बिन सांवरे पियरवा जिय की जरन न जाए।

0: ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना। हमने शुभा जी से कजरी सुनी। शुभा जी, कजरी को लेकर
1: अर्थात 684 किलो हर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोताओं, अब हम आपको आज की इस सभा के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम में आप अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विक्रम साराभाई की जन्मतिथि पर चर्चाएं व गीत भरी कहानी सुनेंगे युवा आवाज। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद ले पाएंगे 8:15 पर। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सरगम। ये तो थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम। और अब कल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। हमारी पहली सभा में कल सुबह 5:30 पर आप सुनेंगे अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स में जानेंगे कटहल की खेती के बारे में 5:55 पर। सुबह 6:10 पर जलियानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा हिंदुस्तान शीर्षक पर 6:15 पर। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:50 पर। सुबह 7:00 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी आप सुनेंगे 7:15 पर। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में पर्यावरण कार्यक्रम के तहत डॉक्टर मंजू नायर के साथ ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे युवाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और कुछ फिल्मी गाने। 8:30 के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे अशोक खोसला और सोनू निगम। सुबह 9:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने।

0: सुबह 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे SMS My Choice। 11:30 पर फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम आप सुन पाएंगे चित्रखेत। ये तो थे कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनवाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवा खिलाई जाएगी और जो बच्चे छूट जाए उन्हें मॉपअप दिवस पर दवाई खिलाई जाएगी।
4: कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
3: खुले में शौच ना करें, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोएं, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे रखें, जूते हमेशा पहनें।
5: कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया। उन्होंने युवाओं से पुस्तक पढ़ने और शॉर्टकट से बचने का आग्रह किया। डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार। उमंग और डिजी लॉकर के करोड़ों उपयोगकर्ताओं को मिल रही है सरकारी सेवाओं की सुविधा। मध्य अंडमान के पर्णशाला कैंप में विश्व हाथी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हाथी संरक्षण और प्राकृतिक आवास की रक्षा पर जोर दिया। और टैगोर कॉलेज ने बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। इसमें उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके विशिष्ट सार्वजनिक जीवन और भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में उनकी सेवा तक के अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों का वर्णन है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी रामनाथ कोविंद सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करना जारी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: केंद्र सरकार ने डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार करते हुए उमंग और डिजी लॉकर पर हजारों सरकारी सेवाएं और दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 31 जुलाई तक उमंग पर करीब 2575 सेवाएं उपलब्ध थीं, जबकि डिजी लॉकर पर 5437 प्रकार के दस्तावेज और सेवाएं मौजूद थीं। उमंग के 11,66,00,000 से अधिक और डिजी लॉकर के 72,43,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। वहीं ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए 4,07,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालित हैं, जिनमें करीब 70,000 केंद्र महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत आज डिगलीपुर में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया तथा देशभक्ति के नारे लगाए। रैली विवेकानंद स्टेडियम से शुरू होकर हेलीपैड तक गई और फिर उसी मार्ग से वापस लौटी। इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देना और स्वतंत्रता दिवस समारोह में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। रैली में डिगलीपुर पुलिस थाना के अधिकारी और कर्मचारी, पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और आम जनता शामिल हुए। दक्षिण अंडमान क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में खेल गतिविधियों और शाम की कोचिंग कक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए 10 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों एवं पीटीआई के अस्थायी समायोजन का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव के तहत संबंधित शिक्षकों को दक्षिण अंडमान जोन के विभिन्न विद्यालयों में अस्थायी रूप से समायोजित किया जाएगा, ताकि खेल गतिविधियों का सुचारू संचालन और विद्यार्थियों को शाम की कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, विश्व हाथी दिवस और बीएड पाठ्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने

वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मध्य अंडमान वन प्रभाग ने आज रंगत रेंज के पर्णशाला कैंप में विश्व हाथी दिवस मनाया। कार्यक्रम का उद्देश्य हाथी संरक्षण, उनके कल्याण और पर्यावास की रक्षा के साथ

मध्य अंडमान वन प्रभाग ने आज रंगत रेंज के पर्णशाला कैंप में विश्व हाथी दिवस मनाया। कार्यक्रम का उद्देश्य हाथी संरक्षण, उनके कल्याण और पर्यावास की रक्षा के साथ साथ वन पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस अवसर पर मध्य अंडमान के IFS अधिकारी विकास यादव मुख्य अतिथि और वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ सैम वर्गीस विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों, महावतों, कार्यकारी और औद्योगिक कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी की। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय ने बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 12 अगस्त थी। यह निर्णय JNRM में कुछ स्नातक एवं एरियर परीक्षाओं के परिणाम तथा पांडिचेरी विश्वविद्यालय से प्रोविजनल प्रमाण पत्र जारी होने में देरी को देखते हुए लिया गया है। पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पूर्ण आवेदन 16 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। प्रवेश अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में कुछ सीटें रिक्त हैं। प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी इन रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश के लिए 14 अगस्त को सुबह 9:30 बजे महाविद्यालय में आयोजित प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मायाबंदर के महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय में NSS इकाइयों और रेड रिबन क्लब ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। कार्यक्रम में RP अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्नोल्ड और ICTC काउंसलर सुशांतो गोल्डर ने युवाओं को एड्स के प्रति जागरूकता, बचाव और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ RVR मूर्ति ने स्वस्थ और जिम्मेदार समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। जीबी पंत अस्पताल में भर्ती 33 वर्षीय शिवकुमार का 4 अगस्त को निधन हो गया था। उनका शव फिलहाल अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने उनके परिजनों, रिश्तेदारों और गैर सरकारी संगठनों से शव की पहचान कर उस पर दावा करने की अपील की है। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि यदि निर्धारित समय में शव पर कोई दावा नहीं किया जाता है तो नियमानुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। हिंदी साहित्य कला परिषद द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को शाम 6 बजे परिषद के हिंदी भवन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें द्वीपों के जाने माने कवि कवित्री अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर जीबी पंत अस्पताल के अवकाश प्राप्त हृदय रोग विशेषज्ञ एवं भोजपुरी समाज के अध्यक्ष डॉ शिव शंकर सिंह मुख्य अतिथि होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया। उन्होंने युवाओं से पुस्तक पढ़ने और शॉर्टकट से बचने का आग्रह किया। डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार, उमंग और डिजी लॉकर के करोड़ों उपयोगकर्ताओं को मिल रही है सरकारी सेवाओं की सुविधा। मध्य अंडमान के पर्णशाला कैंप में विश्व हाथी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हाथी संरक्षण और प्राकृतिक आवास की रक्षा पर जोर दिया। और टैगोर कॉलेज ने बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

चित्रगुप्त की तर्ज थी काली टोपी लाल रुमाल। इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। जयमाला कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं पारस मनी फिल्म का गीत। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, फारूक कैसर के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: काफी और सुमन कल्याणपुर के युगल स्वरों में राजकुमार फिल्म का ये गीत आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोलों को स्वरों में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता। बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है सब।

0: सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कि हम तुम चोरी से बंद

आशा भोसले को आपने सुना, फिल्म थी ठाकुर जरनैल सिंह। असद भोपाली के बोलते गणेश की तर्ज थी। कोहिनूर, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी के आवाजों में। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज़ में जिंगली फिल्म का गीत आपने सुना। हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज थी। फौजी साथियों, यही थी आज के जयमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में।

डीएन मधु की रचना आपने सुनी खेमचंद प्रकाश की तर्ज थी। खुर्शीद की आवाज में तानसेन फिल्म का ये गीत था राग वृंदावनी सारंग पर आधारित। आप सुन रहे हैं राग

समंदर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। ये गीत श्रोताओं आधारित था राग छाया नट पर। राग अनुराग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं प्रोफेसर फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत है शंकर जयकिशन का, और ये गीत श्रोताओं आधारित है राग शिवरंजनी पर।

राग शिवरंजनी पर आधारित प्रोफेसर फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। राग अनुराग, ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: दोस्तों आज के हवा महल में सुनिए प्रहसन आंधी, लेखक और निर्देशक भृंग तुपकिरी।
1: अरे सुनती हो, मैंने कहा तुम्हारे होने वाले जमाई साहब की चिट्ठी आई है।
2: मेरे होने वाले जमाई की चिट्ठी है तो क्या आपकी जमाई की नहीं?
1: हाँ सो तो एक ही बात है, मगर ये उनके कर कमलों के जिन्हें तुमने पसंद किया था अपनी निमो के लिए।
2: अच्छा, मगर लिखा क्या है?
1: उन्होंने अपनी फरमाइशों की एक लंबी चौड़ी सूची लिख भेजी है। कहते हैं अब ये सब चीजें जब उनके चरणों पर चढ़ाई जाएंगी तब कहीं जमाई देवता प्रसन्न होकर निमो का विवाह रचाने के लिए पधारने की कृपा और कष्ट करेंगे।
2: तो उसमें क्या हुआ, ये तो अपने यहाँ का रिवाज ही है।
1: ये भी कोई मांगना है जैसे घर में भीख लग गई और सारी चीजें मांग कर ही पूरी कर लेनी हो?
2: लो तुम तो गाली देने लगे, ऐसा क्या लिख दिया ब्रजकिशोर ने?
1: लो तुम भी सुन लो, लिखता है मुझे एक बढ़िया कार चाहिए।
2: हाँ तो बैरिस्ट्री करता है, कोई गोली तो खेलता नहीं, विलायत पास करके आया है, कार रहने पर ही तो जरा रोब पड़ता है।
1: जी हाँ, अब और सुनो, सिविल लाइन्स में एक दो मंजिला बढ़िया और हवादार बंगला खरीद दो। ऑफिस और घर के लिए उनकी पसंद का फर्नीचर और एक 15 वॉल का रेडियो सेट।
2: क्या ये वॉल क्या होता है?
1: अरे रेडियो 15 वॉल का, यानी बहुत ताकतवर रेडियो चाहिए उनको।
2: है? तो क्या जमाई साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं?
1: उनमें अगर ये भी गुण हो तो भी ये उनकी विशेषता ही होगी।
2: अरे भाई आपका समाज में इतना सम्मान है तो क्या जमाई आपसे इतनी सी चीजों की मांग भी नहीं करे?
1: तो क्या मैंने उम्र भर पसीना बहा बहा कर जो कमाई की है वो सब उनके लिए की है? नहीं बाबा नहीं, इतना महंगा जमाई खरीदना अपने बस की बात नहीं है।
2: हाय राम, तो क्या लड़की को ऐसे ही किसी के गले में बांध देने का इरादा है?
1: अबे तुमने उनकी आखिरी फरमाइश तो सुनी ही नहीं। लिखते हैं कि उनकी पढ़ाई में उनके पिताजी ने कोई 50,000 रुपया खर्च किया है, सो उनको उनका यह 50,000 रुपया भी हमें लौटाना पड़ेगा।
2: हाय बाप रे, 50,000!
1: और मेरा तो ख्याल है कि जमाई साहब को सबसे पहले एक आईना और एक कच्चे चूने का डिब्बा भिजवा देना चाहिए।
2: क्यों?
1: चूना पोत कर आईने में अपना चेहरा देखने के लिए, जरा वो भी तो देखें कि इन सब चीजों के लायक उनका चौखटा है कि नहीं।
2: लीजिए, आप तो जमाई की भी दिल्लगी उड़ाने से।
1: अरे नहीं तो क्या, ऐसे जमाई के पैर पूजे जाएं? दहेज के मामले में तो बाप दादों के भी कान काट रहा है। लोग कहते हैं फैशन की आंधी चली है, नए विचारों का तूफान उठ रहा है। कुछ नहीं, बस केवल स्वार्थों की आंधी चल रही है और स्वार्थों का तूफान उठ रहा है।
3: नहीं कभी पापा। ओ पापा माय डियर।
2: ओहो, तो क्या मम्मी से कोई प्राइवेट बात कर रहे थे पापा?
1: नहीं बेटी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आओ बैठो।
3: मेरे अच्छे पापा।
2: ला ला ला ला ला ला। देखो जी, तुम्हारी लाडली के यही लक्षण मुझे नहीं भाते।
1: वो तो मुझे मालूम है, निमो की कोई हरकत तुम्हें नहीं भाती और अपने लाडले साहब की हर एक हरकत तुम्हें खूब भाती।
2: ये भी कोई बात है, माँ बाप से भी कोई गिट पिट करके बातचीत करता है?
3: अरे मम्मी कोई क्यों, मैं ही तो करती हूँ, क्यों पापा?
2: आपका लाड इसको सर पर चढ़ा रहा है, मैं कह देती हूँ एक दिन सिर पर हाथ रखकर रोना पड़ेगा।
1: भाई तुम तो बेकार में ही बच्ची पर बिगड़ती हो, अभी तो उसके खाने खेलने के दिन है।

0: अरे राम रे, अभी खाने खेलने के ही दिन है। मैं कहती हूँ, अपनी ऐसी लाडली को एरिस्टर बैरिस्टर से नहीं बांधोगे तो क्या किसी ढोर चराने वाले के पल्ले बांधोगे?
1: मम्मी, तुम जब भी देखो मुझे किसी न किसी के पल्ले बांधने की बात करती हो।
2: चुप हो जाओ बेटे, चुप हो जाओ। चलो, तुम्हारी मम्मी तो चली भी गई, अब चुप हो जाओ ना।
1: चली गई? चलो अच्छा हुआ। हाँ पापा, मैं आपको एक बात याद दिलाने आई थी।
2: वो तुम्हारा नेकलेस के बारे में ना, वो शाम तक आ जाएगा।
1: ओ, शाम तक पापा, वो तो बहुत देर हो जाएगी। पापा देखो ना, मुझे तो 4 बजे ही लेडीज क्लब में लेक्चर देने जाना है।
2: लेक्चर देने? तो आज के दिन वही पुराना नेकलेस पहन के चली जाना बेटी।
1: वाह पापा, सब सहेलियां बार बार एक ही नेकलेस देखेंगी तो मुझे चिढ़ाएंगी नहीं क्या? इतने बड़े राय साहब की बेटी के पास भी एक ही नेकलेस हो और मैं भाषण पर क्या खाक दे सकूंगी?
2: अच्छा बेटी, अच्छा, लेकिन किस विषय पर भाषण है?
1: भाषण वो तो पापा स्त्रियों की कम खर्ची और देशोन्नति इस विषय पर है।
2: वाह बेटी, तब तो खूब कम खर्ची कर रही हो। अच्छा अभी मंगवा देता हूँ।
1: और हाँ दीदी, आपको तो आज कहीं जाना नहीं है ना?
2: नहीं तो
1: आज कार मैं ले जाऊंगी। अच्छा बाय बाय पापा। ला ला ला ला ला ला ला।
2: बदतमीज नालायक, जरा कुछ हुआ नहीं टूट पड़ते। देखो ना, देखो कैसी शरारत की है मर्दूदों ने।
0: क्या किया?
2: अरे निम्मो के लापता होने की बात को किस बुरी तरह तोड़ मरोड़ कर छाप दिया इन बेईमानों ने।
0: हाय राम, क्या लिखा है?
2: लिखते हैं, पता चला है कि स्थानीय सुप्रसिद्ध सेठ राय साहब बिहारी लाल की युवती कन्या कल से अपने ड्राइवर के साथ लापता है। अरे इन्होंने जरा सी बात पर मेरी नाक काट कर रख दी कम वक्तों ने। मगर इतने जल्दी पता कैसे चला? जरूर किसी की शरारत है इस बात के पीछे।
0: तो झूठ क्या लिखा है? और चढ़ाओ सिर पर। कितनी बार कहती थी कि लड़की को इस तरह सिर पर न चढ़ाओ, पीछे पछताना पड़ेगा। पर कोई मेरी माने तब ना।
2: मगर ये भी तो हो सकता है कि अपनी किसी सहेली के यहाँ रुक गई हो।
0: सब जगह तो आदमी भिजवा कर पता लगवा लिया, सारे शहर की खाक छनवा डाली। अब और कौन सी सहेली बाकी है?
3: आई एम वेरी सॉरी राय साहब, मुझ पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी।
2: ओ, बैरिस्टर ब्रजकिशोर, अच्छा हुआ कि बिजली गिरकर भी आप बच गए।
3: ओ रियली, आई एम वेरी सॉरी मदर।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ना अखबार वालों की बात पर न जाना। हमारी लड़की ऐसी नहीं है, वो किसी अपनी सहेली क्या रह गई होगी।
3: नहीं फिर भी मुझे माफ कीजिएगा, अब आपको मैं तकलीफ नहीं देना चाहता। रियली मदर, अब अगर मुझे आप एक की बजाय 2 बंगले भी देंगी तब भी मैं ऐसी बदनामी को अपने गले नहीं बांध सकता।
0: अरे बेटा, अखबार वाले तो बिल्कुल झूठे हैं बेटा। लो, अरे तुम तो खड़े खड़े ही बात कर रहे हो। बैठ जाना बेटा, जरा तो बैठो, बैठो।
3: जी नहीं, मुझे बिल्कुल समय नहीं। मैं जो कहना चाहता था कह चुका। आपकी लड़की से संबंध करने के बारे में जितनी बातचीत मैंने की, उसी के कारण अब जो मेरी दोस्तों में बदनामी हो रही है वही कुछ कम नहीं है। मेरी ओर से ये रिश्ता नामंजूर समझिए।
1: अरे आप भी चुप खड़े हैं, इन्हें कुछ समझाओ ना।
3: बस बस, मैं कह चुका, मैं अपनी इज्जत हल्की नहीं कर सकता।
2: अच्छा बच्चों, तो तुम्हें इज्जत इतनी प्यारी है? अभी ठिकाने न ला दूं अक्ल को तो कहना। बैरिस्टर साहब, अरे भाई बैरिस्टर साहब, आप तो ना के नाराज होकर जा रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए।
3: कहिए।
2: अरे यहाँ आओ, तुम बैठो यहाँ आराम से। बस ठीक ठीक, बस अब सुनो, हमारी निम्मो का बस घंटे 2 घंटे में पता चल जाएगा।
3: मगर मुझे इससे क्या? सुबह से मेरे मित्रों के फोन पर फोन आ रहे हैं, मैं तो परेशान हो गया। बात चाहे कुछ भी हो, बदनामी तो साथ ही मेरी ही हो गई।
2: देखिए देखिए, मैंने फैसला किया है कि आप जानिए, निम्मो मेरी प्यारी बेटी, मैं उसे अपने बेटे से भी ज्यादा चाहता हूँ। मैंने तय किया है कि अपनी आधी जायदाद और आपने जितनी फरमाइशें की है ना वो अलग, इतना कुल मिलाकर अपनी बेटी को दहेज में दे दूं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस ओर सहानुभूति पूर्वक ध्यान देंगे।
3: मगर देखिए ना, मेरी कितनी खिल्ली उड़ाई जाएगी।
2: जिंदगी में कई तरह के अनुभव होते हैं बेटा, बुढ़ापे में हमारे ही मुंह पर स्याही पुत गई तो क्या करें, आखिर डूब मरने से तो रहे।
3: सो तो ठीक है पिताजी, मगर
2: अब मगर वगैरह कुछ नहीं, बस तुम भी इस प्रकार हमसे मुंह मोड़ लोगे तो हमारी इज्जत तो बिल्कुल धूल में मिल जाएगी। अभी अगर हमारी निमो के हाथ तुम अपने हाथ में ले लोगे बेटा, तो देखना हमें बदनाम करने वालों में कैसा तमाशा पड़ता।

0: तो एक बात पूछूं?
1: एक नहीं चार पूछो बेटा।
0: मैं जानना चाहता था कि
1: हाँ बे कटके पूछो क्या जानना चाहते थे।
0: जी वैसे कुछ नहीं, यूं ही एक जरा सी बात, यानी मेरा मतलब था कि आपकी जायदाद
1: कुल कितनी है। आखिर बैरिस्टर हो ना, सब जांच पड़ताल कर लेना चाहते हो कि ये सौदा महंगा पड़ेगा या सस्ता। हाँ तो सुनो बेटा, मेरी कुल जायदाद यह कोई 8-10 लाख के बीच होगी। खाने वाले कुल मिलाकर एक लड़की और एक लड़का है।
0: अब देखिए, आपने मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया। एक ओर तो मेरी बदनामी है और दूसरी ओर आपकी इज्जत का भी ख्याल है।
2: मंजूर कर लो बेटा, हमारी इज्जत का ख्याल करो।
0: अच्छा तो खैर, मैं अपनी इज्जत को आपकी इज्जत पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं।
1: वाह वाह क्या कहने। मगर बेटा, अभी जो बदनामी की हवा उड़ गई उसका क्या करोगे?
0: उसका क्या है, मैं आज ही अखबारों को स्टेटमेंट दे देता हूँ कि निर्मला मेरी भावी पत्नी।

0: मंजूर कर लो बेटा, हमारी इज्जत का ख्याल करो।
1: अच्छा तो खैर, मैं अपनी इज्जत को आपकी इज्जत पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ।
2: वाह वाह, क्या कहने। मगर बेटा, अभी जो बदनामी की हवा उड़ गई उसका क्या करोगे?
1: उसका क्या है, मैं आज ही अखबारों को स्टेटमेंट दे देता हूँ कि निर्मला मेरी भावी पत्नी है और वो मेरे ही साथ सैर को गई हुई थी, बस सारी बात खत्म हो जाएगी।
2: वाह बेटा, क्या हिकमत सोची है तुमने। मिस्टर बैरिस्टर, बस 2-3 मिनट में चंद रुपयों ने तुम्हारे ख्याल इतने बदल डाले, देखते ही देखते रुपयों की आंधी में तुम्हारी इज्जत और बदनामी की बात फुर हो गई। मेहरबानी करके फॉल आउट कर यहाँ से चल दो।
1: जी, ये आप कैसी बात करने लगे?
0: आप कैसे आदमी हैं जी?
2: कुछ नहीं, मैंने कह दिया बस यहाँ से चल दो।
1: अच्छा, बहुत अच्छा, मैं भी देख लूंगा मेरी बेइज्जती करने का फल।
2: हाँ हाँ, तुझसे जो बने कर लेना, पहले यहाँ से तुम मुकाबला कर।
0: हाय राम, तुम्हें ये क्या हो गया है?
1: बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग।
3: ओ पापा,
0: मम्मी, ओ हम लोग बड़ी आफत में फंस गए थे पापा।
2: बेटी निम्मो, तुम क्या हो गया था बेटी?
0: कुछ भी नहीं पापा, मुझे माफ कर दो मम्मी, अब कहीं अपनी मर्जी से घूमने नहीं जाऊंगी।
4: पहले ये तो बता कि हो क्या गया था।
0: मम्मी, हुआ कुछ भी नहीं, बस क्लब में लेक्चर दिया और शाम को 6 बजे के करीब मैं अपनी एक नई सहेली की फरमाइश पर उसे अपनी कार में घुमाने के लिए पहाड़ पर चली गई। बड़ी दूर निकल गए हम लोग और ड्राइवर बार बार लौटने के लिए कहता था, मगर हमें इतना मजा आ रहा था कि हम लोग बस आगे ही बढ़ते गए। बस फिर 8 बजे के करीब इतनी जोर की आंधी आई कि हम लोग घबरा गए, फिर जोर का पानी बरसने लगा। अरे वो तो अपना ड्राइवर ही इतना होशियार था पापा, उसने कार को खाई में गिरने से बचा लिया। हम लोग लौटने को हुए तो देखते क्या है कि रास्ते पर एक बड़ा भारी पेड़ गिरा पड़ा है। बस हमारी गाड़ी अटक गई, बरसात और तूफान के कारण हम कहीं मदद मांगने भी तो नहीं जा सके। सवेरे कुछ गांव वालों की सहायता से वे पेड़ हटाया गया, तब कहीं हम लौट सके। सच पापा, हमें रात भर गाड़ी में बैठे बैठे सांस रोके पड़े रहना पड़ा था। अपना ड्राइवर बड़ा होशियार है पापा, इस बार उसकी तनख्वाह जरूर बढ़ा दीजिएगा, इसने हम लोगों की जान बाल बाल बचा ली, नहीं तो अरे बाप रे कितनी बड़ी खाई थी।
2: मगर वो तुम्हारी नई सहेली कौन थी?
0: वो पिताजी अपने वो बैरिस्टर ब्रजकिशोर है ना, उनकी कोई रिश्तेदार थी।
2: बस बस बेटी, सब समझ गया, अब भी कुछ समझे या नहीं?
0: मगर मैं तो नहीं समझी डैडी।
2: तुम्हारे समझने की जरूरत भी नहीं बेटी, दरअसल वो आधी पानी नहीं था जिसने तुम्हें रोका, वो कोई और था। अरे वारे बैरिस्टर ब्रजकिशोर।
5: तो ये था प्रहसन आंधी, इसे लिखा और निर्देशित किया भृंग तुपकिरी ने। विविध भारती की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

0: रहता है। इस प्रोग्राम में हम उन तथा कथित किसानों की बात करेंगे जो किसान भी हैं और मान ना मान मैं तेरे फार्मर भी हैं। उनके घर में आएंगे हम, उनके पास जाएंगे हम, उनसे पूछेंगे ये बेल ये लता आखिर किसने की ये खता, कैसे खिला ससुराल गेंदा फूल, कैसे हुए लाल टमाटर। तो फार्म टू सिटी में आप सभी हॉबी वाले बागवानों को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है,
1: चरण स्पर्श करता है और ठुमका लगा के बोलता है,
0: मेरी क्यारी में तुम्हारा क्या काम है, हमारी क्यारी में क्या काम कर रही। अवनी उसके पास हम जाते, पता करते किधर खड़ी है उधर, वो बाहर से आउटडोर से अपने को फीडबैक वही देंगी ना।
1: हेलो अवनी, कैसी हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं कम अच्छा हूँ, ताकि आपको लगे कि आप ज्यादा अच्छी हैं। और वहाँ क्या माहौल है, मतलब लोग बागवानी के दीवाने हैं हॉर्टिकल्चर के?
2: बागवानी वालों के लिए तो ये सबसे अच्छी सीजन है, क्योंकि बारिश जब होती है तो हर किसान का मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है।
1: हाँ ये तो है,
2: कि इस वक्त प्रकृति की जो छटा होती है वो बाकी और कभी भी नहीं देखती।
0: ये तो है। थैंक यू अवनी, आपसे कनेक्टेड रहेंगे, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है फार्म सिटी। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 एक्शन, एंड जगा लो अपने अंदर का माइकल जैक्सन।

फार्म टू सिटी। अरे किसानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ ओम प्रकाश ओम प्रकाश राठौर यानी ओपी राठौर। आप सभी का स्वागत है इन अ वेरी फ्रेश न्यू प्रोग्राम कॉल्ड फार्म टू सिटी। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम आप तक हम लेके आए। मेरा नाम ओपी राठौर है, बताई चुके हैं। सबसे खास बात इस प्रोग्राम की यह है कि हम अब किसान भाइयों के साथ साथ अपनी सेवाएं उन लोगों के लिए लेके आए हैं जो काम तो कुछ और करते हैं लेकिन मन में उनके किसान

0: अरे अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे हैं?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछ ना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

तो गार्डनिंग के शौकीनों, बागवानी के शौकीनों, अब हम आ गए हैं लेके एक और खास मेहमान। ये एक ऐसे शख्स हैं, स्टूडेंट है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और इन्होंने मजाक मजाक में, मजे मजे में एक छोटा सा इंस्टा चैनल चलाया और वहां पे उनकी एग्रीकल्चर के नॉलेज ने ऐसा रंग दिखाया कि आज उनके पास 1,00,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बहुत सारे प्लांट्स की इनके यहाँ डिमांड है। आइए इनसे बात कर रहे हैं और जानें कि ये कैसे कमाल कर रहे हैं गार्डनिंग में। हाँ तो भाई, जब भी कोई नया प्रोग्राम शुरू होता है तो लिसनर्स के मन में ये प्रश्न आता है, इसमें अलग क्या होगा? तो हम पहले ही आपको स्पष्ट कर चुके।

0: हैं कि यहां हम छोटे किसानों अर्थात कि बागवानों की बात करेंगे। हालांकि वो छोटे बड़े नहीं होते, लेकिन समझने के लिए फिलहाल हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज की है। तो हम ये बैल्कनी के, छतों के, आंगन के किसानों के लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं और इसी क्षेत्र में कुछ लोगों ने गजब की हलचल मचा दी है। तो भाई ऐसे लोगों से मिलवाने, उनके माध्यम से आपके अंदर इंस्पिरेशन जगाने का हम काम करते हैं, तो ये काम हम शुरू करते हैं। चलिए पहले गेस्ट से आपको ऑनलाइन फोन पे मिलवाते हैं, देखते हैं वो कौन है और क्या वो आपको इस क्षेत्र में, फार्म टू सिटी क्षेत्र में इंस्पायर कर पाते हैं या नहीं। वेलकम टू द शो, क्या नाम है दोस्त आपका?
1: सर मेरा नाम अमान आलम है। सर मैं जौनपुर से बोल रहा हूँ, यूपी जौनपुर से।
0: वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए क्या करते हैं आप?
1: सर मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ होम गार्डनिंग से रिलेटेड। इंस्टा पे मेरा एक इंस्टा पेज है।
0: ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके मन में आया?
1: सर मेरे पापा बहुत गार्डनिंग के शौकीन है, तो मैं जब घर पे आया, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर से बीएससी किया हूँ, तो मैं घर पे आया तो मैं अपने पापा के साथ हेल्प करने लग गया। फिर मुझे इंटरेस्ट आया तो मैं इस पे वीडियोस बनाने लग गया और लोगों ने इसको पसंद किया बहुत।
0: तो हमारे लिसनर्स में से जिन्हें फूल उगाना, फूलों की खेती करना, घरों में पूजा के लिए या घर सजाने के लिए या यूं ही फूलों से प्रेम है, वो इस बात को जरूर गौर से सुने। आपने बताया था कि आपने जब नया नया चैनल खोला तब एक गजब की सक्सेस स्टोरी पैदा हुई, हमारे श्रोता भी वो जानना चाहते हैं।
1: सर जब मैंने वीडियो डालना शुरू किया तो शुरू में ऐसा रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन एक वीडियो लोगों ने इतना पसंद किया, उस जिसमें मैं बगन बेलिया के बारे में बताया था और ये प्लांट लगाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया था कि आप अपने घर पर लगा सकते हो, बहुत बेहतरीन लगता है। तो बहुत ही अच्छा वो वीडियो गया, उसको अभी तक 52 मिलियन व्यूज आए हैं उस पे, और पहले ही दिन 1 लाख प्लांट का ऑर्डर आ गया था।
0: अच्छा घरों में हम कौन कौन से फूल की लताएं या बुगनवेलिया क्या लगा सकते हैं, थोड़ा कुछ परामर्श दीजिए ना हमारे लिसनर्स को।
1: गार्लिक वाइन, जैकरेंडा, मधुमालती, बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये अभी मैंने ये 3 क्रीपर प्लांट के नाम लिए, छत पर चढ़ाने के लिए काम पे आते हैं। और यहाँ पे जैकरेंडा ये ट्री है, ये बड़ा सा ट्री रहता है जिसके पास स्पेस हो लगा सकता है।
0: जी अब चलने से पहले, अब आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं अमान, तो आप ये भी बता दीजिए कोई ऐसी टिप्स हो जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें।
1: सर लिसनर के लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि वो फर्टिलाइजर ना यूज करें, मीन्स किसी के बताने पे कोई सभी फर्टिलाइजर यूज मत करें, वो काउडंग यूज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं।
0: वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है आपने बताई, थैंक यू सो मच। और चलते चलते कोई गाना भी बता दीजिए जो आप सुनना चाहते हैं और लिसनर्स को सुनाना चाहते हैं।
1: सर मेरा फेवरेट सॉन्ग है तुम ही हो, आस्की टू का।

0: फार्म टू सिटी में हमारे साथ साथ आउटडोर में चल रही हैं अवनी। देखते हैं अवनी के पास हमें बताने के लिए क्या कुछ है।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी हरी हरी दोस्त अवनी और इस समय मैं भरपूर हरियाली के बीच हो रही हूँ मतवाली। घर के जिन के पीछे ही इतनी सी जगह में उग रही है इतनी सारी सब्जियाँ और सब्जियों की बेल, मिर्ची, करेला, घिया, बैंगन, टमाटर और बीन्स। और हमारे साथ इस वक्त है तरुण जी। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे फार्म टू सिटी।
2: धन्यवाद।
1: और साथ में ओपी मेरे साथ हैं जो ग्राफिक डिजाइनर साहब, वो दिल से जज्बे जुनून और शौक से बिल्कुल रंगीन है, होम गार्डनर, ग्रीन होम गार्डनर है। तो तरुण जी, आप ये बताइए कि आपकी इस तरफ रुचि कैसे हुई?
2: मेरे फादर हमारे घर के पीछा बहुत सारी जगह है तो वहाँ पे कुछ न कुछ उगाते रहते थे, तो बचपन में वो देखता था मैं। और ऐसे इंटरेस्ट उस टाइम तो बहुत नहीं था, लेकिन कोरोना के टाइम पे थोड़ा टाइम मिला तो लगा कि कुछ हम भी मतलब करना चाहिए। वैसे तो मेरा गार्डन पूरा हरा भरा ही है, लेकिन नॉर्मली हम सब फ्लावरिंग प्लांट बहुत लगाते हैं, फूलों का बगीचा सबको अच्छा लगता है।
1: जी जी।
2: तो मैंने सब्जियां लगाना शुरू की और धीरे धीरे सफल होता गया, निष्फलता भी मिली। बहुत बार ऐसा हुआ कि पूरा बेल इतनी बड़ी हो जाती है पर एक भी फल नहीं लगा, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए।
1: जी जी। पर वो एक बैंगन, एक मिर्ची, एक करेला जो होगा होता है उससे कितनी खुशी मिलती है ना?
2: जी जी जी। मेरे घर पे जो अगर एक या दो बैंगन लगते हैं तो मैं वो तोड़ के बड़े चाव से ले जाता हूँ किचन में और बोलता हूँ कि इसका डंठल मत काटना, इसको ऐसे ही डालना, तो मुझे सब्जी बनने के बाद में भी पता चले कि कौन सा घर का बैंगन है। और मैं तो ये बताऊंगा कि अगर आपके घर में 5 या 6 ऐसे पौधे होने ही चाहिए सब्जी के तो लगाइए। लेकिन तुलसी है, जैसे पारिजात है, अड़ोसी है, कड़ी पत्ता है, सहजन है, तो ये सारे इतने हर दिन अपने को काम में आने वाली ये सब्जियां और ये चीजें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक लोग लगाए ये।
1: और ये सब आसानी से उग भी जाता है, बहुत मेंटेनेंस नहीं मांगता है?
2: नहीं, बिल्कुल आसानी से।
1: एक्चुअली बात ये है कि दरअसल जब हम कुछ खुद अपने गमलों में उगाते हैं तो हमें उन किसानों की वैल्यू पता चलती है, उनकी मेहनत, उनकी लेबर, और जो वो दृढ़ता से और हिम्मत से सब तरह के मौसम को झेलते हुए वो लोग हमारे लिए एक फूड बास्केट जो तैयार करते हैं। सलाम है उन किसानों को और उनकी मेहनत को।
2: तो यही सोच करके थोड़ा थोड़ा हम लोग सब उगाएंगे ना घर पे तो कुछ ना कुछ तो फायदा होने ही वाला है।
1: आपको क्या लगता है कि ये होम गार्डनिंग लोगों को एनकरेज करना चाहिए या ऑलरेडी लोग एनकरेज हो चुके हैं होम गार्डनिंग के लिए?
2: नहीं नहीं, करना चाहिए और करने की बहुत जरूरत है। लोग होम गार्डनिंग करना चाहते हैं, कई लोग ऐसे हैं और कई लोग मुझे पूछते हैं कि हमारी तो छोटी सी बालकनी है तो हम तो क्या करें। तो हम यही कहते हैं कि अगर बालकनी है तो एक करेले का बेल लगा दीजिए, ककड़ी की बेल लगा दीजिए, आप कुछ शुरू तो कीजिए। आप शुरू करेंगे कुछ तो तभी आपको पता चलेगा। दिन में 2-3 घंटे की धूप अगर आपके घर में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आती है तो आप अच्छे से कोई कोई ऐसी सब्जी लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं जो आसानी से लग जाती है, मिर्ची भी आसानी से उगती है। तो ये करना बहुत आसान है और इसकी खुशी बहुत अलग है, मतलब आप देखिए।
1: अब तरुण जी, मुझे आपसे जो अगला प्रश्न पूछना था वो ये कि जैसे हम पेड़ पौधे उगाते हैं तो प्रकृति में हम हरियाली तो स्थापित करते हैं, साथ ही हम वाटर साइकिल, जो नेचर का वाटर साइकिल है, रेन वाटर, उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि पेड़ लगाते हैं पर पानी की कमी होती है, तो सरकार ने पिछले कुछ सालों से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए भी काफी सारे स्कीम शुरू किए हैं, जिसमें एक कैच द रेन सीरीज शुरू करी है स्कीम, जिसके अंतर्गत किसानों ने ना अपने तालाब और रेन वाटर से बोरवेल रिचार्ज करने का सराहनीय काम किया है। और आपने भी इस दिशा में कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसा किया है, तो क्या आप

0: अपने कंट्रीब्यूशन और अपनी स्कीम जो आपने अभी इम्प्लीमेंट करी उसके बारे में बता सकते हैं क्या?
1: तो हम लोग बारिश का पानी पाइप के जरिए फिल्टर करके बोरवेल में डालते हैं, तो जिससे बारिश का पानी बाहर जाने बह जाने के बजाय वो बोरवेल में जाता है, जिससे बारिश के पानी का टीडीएस बहुत कम होता है। जिससे जो बोरवेल का पानी है उसका टीडीएस भी वो कम करता है। और स्वच्छ पानी, आरओ का पानी स्वच्छ है लेकिन वो स्वस्थ नहीं है।
0: जी
1: सही में हमको स्वस्थ पानी पीना चाहिए,
0: जी
1: जिसमें प्रॉपर मिनरल्स है या जो भी उनको जो शरीर को जरूरी है वो सारी चीजें होनी चाहिए।
0: जी
1: तो ये बारिश के पानी से हम लोग मतलब स्वस्थ पानी भी पा सकते हैं।
0: जी
1: हम लोग घर में मटके में बारिश का पानी कपड़े से डायरेक्ट भर लेते हैं और उसको मटके में रख के उसको पीते हैं बारिश
0: जी
1: के मौसम में,
0: जी
1: तो ऐसा करना चाहिए।
0: जी जी आप स्ट्रक्चर्ड वाटर के बारे में आप इंडिकेशन दे रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ। आपने फिलहाल एक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुआं बनाया है, आप उसके बारे में भी हमारे लिसनर्स के साथ कुछ शेयर कर सकते हैं?
1: जैसे हमारे यहाँ पे एक ऐसा बोलते हैं खंभाती कुआ बोलते हैं, जो ऐसा बनता है कुआ बनता है जिसमें ईटे से पूरे 30 फीट बाय 15 फीट डायमीटर का जैसे बनता है, जहाँ पे रेत है जमीन में तो
0: जी
1: वहां पे बन सकता है, पत्थर वाली जमीन है वहां पे ये जरा मुश्किल है। तो अभी हमने गार्डन है वहां पे बनवाया है, तो
0: जी
1: अभी हाल में ही बारिश में पूरा एक ही दिन में वो पूरा कुआ भर गया था और एक डेढ़ दो घंटे में ही पूरा पानी जमीन के अंदर वापिस पूरा सोख लिया गया। मतलब
0: बहुत अच्छी बात है, और आपकी ये पहल से मुझे लगता है कि आसपास का इलाका सचमुच में उसका वाटर टेबल थोड़ा लेवल ऊपर आएगा।
2: थैंक यू अवनी, आपने इतनी सारी जानकारी दी, हम आपसे और भी बातें करते रहेंगे। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। जी हाँ, अब ये योजना साल 2026 से लेके 2031 तक जारी रहेगी, जिसके लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारी भरकम बजट मंजूर किया है। इसका मतलब ये है कि पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। ये राशि 2,000 रुपए की 3 बराबर बराबर किश्तों में सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। किसान भाइयों और बहनों, आपको बता दें कि अभी पिछले जून महीने में ही सरकार ने 23वीं किश्त के पैसे सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए हैं। और गर्व की बात यह है कि देश की महिला किसान भी इस योजना का बढ़ चढ़ के लाभ उठा रही हैं। इस योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए pmkisan.gov.in पर जाएं और अपने स्मार्टफोन पर पीएम किसान मोबाइल ऐप पर डाउनलोड करें। वहां नो योर स्टेटस विकल्प पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं और अगर कोई कमी है तो उस गलती को या कमी को पूरा भी कर सकते हैं। खेतों की खुशहाली, परिवारों की तरक्की और भारतीय कृषि का सुरक्षित भविष्य पीएम किसान सम्मान निधि, हर कदम पर किसान के साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताते हुए माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया,
3: पीएम किसान योजना जारी रहेगी और लगभग 3,15,000 करोड़ रुपया अगले 5 सालों के लिए इस योजना में खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमारे देश के 86% किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। 86% छोटे लघु और सीमांत किसान, उनके लिए तो विकास का नया प्रकाश लेके आई है। पहले इन छोटे किसानों को बोनी के लिए खाद और बीज के लिए भी कई बार प्राइवेट साहूकार या बाकी जगह से ऊंचे ब्याज की दरों पर पैसा लाना होता था, लेकिन अब वो आराम से खाद की बीज की जरूरत पूरी कर सकते हैं। योजना का जो हमने मूल्यांकन करवाया उसमें भी यही पाया गया कि किसान इससे संतुष्ट है। 92% किसान खेती के कामों में इसका उपयोग करते हैं और इसके कारण किसानों की आय भी बढ़ी है और उत्पादन भी फसलों का बढ़ा है, इसलिए ये योजना जारी रहेगी।
2: श्रोताओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने श्रोताओं, अपने किसान भाइयों और बहनों को एक बात बताना चाहते हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें। यदि कोई आपको नकली बीज, खाद या कीटनाशक बेचने का प्रयास करे तो उसकी सूचना तुरंत दें। कहां? नंबर है किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1800-180-1551, 1800-180-1551। याद रखें, आपकी शिकायत ही आपकी फसल की रक्षा है। आप सुन रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा

0: आयोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी ओपी राठौर के साथ। और अब हम आपको मिलवाने वाले हैं एक और जबरदस्त फैंटास्टिक सक्सेस स्टोरी से। कौन है वो जानना चाहते हैं? तो रहिए हमारे साथ एफएम रेनबो की इस खास महफिल में। चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं, आपको उनसे मिलवा ही देते हैं। आपका नाम क्या है जी?
1: जी, मिथिलेश कुमार सिंह मेरा नाम है और वर्तमान में मैं दिल्ली में रहता हूँ और मूल पता मेरा उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है।
0: ये वर्टिकल गार्डनिंग आखिर होती क्या है?
1: वर्टिकल गार्डनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कम जगह में आप ज्यादा उगा सकते हैं। जैसे अभी खेती होती है, हमारी खेती से अगर समझें तो गांव में खेत होते हैं, वहां पे बीज इत्यादि की खेती होती है, जो भी हम सब्जी या फसलों की खेती करते हैं। शहरों में जगह कम होने के कारण हवा में ऊर्ध्वाधर कह लीजिए, वर्टिकल कह लीजिए, तो कम जगह में ज्यादा उत्पादन वहां पे होता है। तो वर्टिकल गार्डनिंग अगर ये कॉन्सेप्ट है तो इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ।
0: इसका आइडिया कहाँ से आया आपको?
1: ये देखिए, ये कोरोना के समय की एक कहानी है। उससे पहले मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपने प्रोफेशन में था और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मैं काम कर रहा था। कोरोना में जब वर्क फ्रॉम हुआ, होम हुआ, तो बहुत सारा खाली समय बचने लगा और मैं अपनी वाइफ के साथ आधा एक घंटा मैं छत पे टहलता ही था और अभी भी हम लोग टहलते हैं। तो ये हुआ कि सब्जियां किया जाए, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि गमलों में करेंगे तो छत पे टहलने की जगह ही कहाँ बचेगी। तो वहां से धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, तो कोरोना काल का ये इनोवेशन है सर।
0: अच्छा, इसको कैसे डेवलप किया आपने?
1: धीरे धीरे देखिए, जब आप कोई भी आइडिया आती है तो कोई भी इनोवेशन आता है तो अलग अलग फेजेस में डेवलप होते हैं। जैसे जगह बचाने की कोशिश शुरू हुआ ये, तो पहले ये हुआ कि अच्छा चलो बॉटल्स में लगा लेते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ। फिर पाइप का आइडिया आया तो उसमें मल्टीपल होल्स किए गए, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स थे। ये सारी चीजें अगर वीडियो के माध्यम से देखी जाए, हमारे चैनल्स पे है, तो ये पूरी जर्नी हमने बता रखी है। लेकिन यहाँ पे आपके श्रोताओं के लिए शॉर्ट में ये बताएंगे कि जब भी आपको कोई आइडिया लेके आते हैं तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट फेज से गुजरना पड़ता है और ये आइडिया भी गुजरा और अब ये आइडिया फाइनल स्टेज में प्रोडक्शन दे रहा है, न केवल दिल्ली एनसीआर में बल्कि पूरे देश भर में इसे कई लोग अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं सर।
0: वाओ, अच्छा इसमें कौन कौन सी फसलें ली जा सकती हैं?
1: सब्जियों पे हमारा जोर रहता है और सॉइल बेस्ड गार्डनिंग है और सब्जियों में 95% सब्जियों का जो आप नाम लेंगे इसमें उग जाती हैं। मूलतः तीन कैटेगरी में आप सब्जियों को डिवाइड कर लीजिए। मैं अपने वर्टिकल गार्डनिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर बताऊं, एक रेगुलर सब्जियां हो गई जिसमें जिनकी जड़ें होती हैं थोड़ा बड़ा पौधा होता है, जैसे बैंगन हो गया, भिंडी हो गई, शिमला मिर्च हो गया, घिया, तोरी, करेला, थोड़ी बड़ी सब्जी, बड़े पौधे होते हैं सब्जियों में, तो ये रेगुलर हो गई, ये भी लग जाती हैं सभी तरह की सब्जियां। एक हो गई आपकी लीफी वेजिटेबल्स जिसमें पत्तेदार सब्जियां कह लीजिए, पालक हो गया, चौलाई हो गया, धनिया पत्ता हो गया, हरा प्याज, हरा लहसुन हो गया, लीफी ग्रीन्स इसको हम लोग बोलते हैं, वो भी टावर में उग जाते हैं। और तीसरा रूट वेजिटेबल्स होती हैं, मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, उसके लिए भी हाइब्रिड टावर से, मैं फिर से मैं दोहराऊंगा कि अगर इसको देखेंगे वीडियोज में जो हमारा प्रोजेक्ट है वेज रूफ, उसके चैनल पे ये पूरी डिटेल और क्लियर होती जाएगी। तो लगभग लगभग हर तरह की सब्जियां हो जाती हैं सर इसमें।
0: कितना खर्चा आता है, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है।
1: देखिए, एक्सपेंस की बात जब भी आप करते हैं तो एक्सपेंस की बात एक टाइम कंटेक्स्ट में होता है। और ये जो टावर हम लोग यूज करते हैं यूपीबीसी का, तो ये टावर जो है 30-35-40 साल चलता है, तो एक लंबा टाइम लगता है। तो मार्केट से आप टावर ले सकते हैं और हमने इसका सब कुछ ओपनली बता रखा है, खुद भी लोग इसको बना सकते हैं। और बनाने के बाद तो मार्केट का जो प्राइस होता है पीवीसी पाइप का, लेके आइए, कटिंग कीजिए, बनाइए, या फिर उसको अगर आप मंगाते भी हैं तो खर्च का कंटेक्स्ट देखें तो मल्टीपल ईयर्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको देखते हैं कि नहीं आज क्या खर्चा हो रहा है तो आपको महंगा लगेगा, लेकिन देखेंगे कि 20-25 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बात की गारंटी है कि वर्टिकल गार्डनिंग के माध्यम से शहरों में बालकनी में छोटी से छोटी आप जो है सैकड़ों सब्जियों के पौधे लगा सकते हैं बिना जगह घेरे। तो आई थिंक कि उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए।
0: वेरी नाइस, अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी, उत्सुकता पैदा होगी और फिर वो पैदा करेंगे फसलें और खीरे, टमाटर, सब्जियां।

0: ओके जी, आज की फार्म टू सिटी से चलते हैं, निकलते हैं, लेकिन याद रखें कि हर इंसान की आंखों में वही सपने पलते हैं कि मेरी बालकनी में भी एक छोटी सी क्यारी हो, उसमें बैठी मेरी बिटिया छोटी सी प्यारी हो, और खुशियां घर में बहुत सारी हो, घर में खुशहाल हर एक नारी हो, गमलों में पानी डालने की तैयारी हो, और आपसे मिलने की हमारे दिल में बेकरारी हो। क्योंकि हम ये भी बताना चाहते थे कि हम अच्छे गाते ही नहीं हैं, हम अच्छे लिखते भी हैं। लिखे जो खत तुझे, आपको खत नहीं लिखना, हमें ईमेल लिखना है। हमारा ईमेल आईडी अवनी बताएंगी, अवनी कहाँ हो, ईमेल बताएगी फीमेल, आई मीन टू से आप बताएं हमारा ईमेल एड्रेस जहां लोग अपनी क्यारी का फोटो भेजें।
1: हमारा ईमेल एड्रेस है OPG, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, सुनिए जरा। farmtocitydelhi@gmail.com, जहाँ पर आप हमें अपने सुझाव और अपनी पसंद, अपने किए हुए कुछ काम या फिर अपने उगाए हुए बगीचों में फल सब्जियों की तस्वीरें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे फिर जल्द मिलेंगे। नमस्कार।
0: फिर मिलेंगे इन फार्म टू सिटी FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे हर संडे। नमस्ते।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
3: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
2: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
4: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
2: संसदीय कार्य

0: मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
2: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
3: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल

0: और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांति मोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना और

0: ओलंपिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

गुमनाम फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी शारदा की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आप

गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म थी पाकीज़ा। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। फिल्म माई लव, मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत।

कच्चे धागे इस फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

शायद की तर्ज शकील बदायूनी का लिखा गीत था, आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया।

रवि की तर्ज थी शकील बदायूनी का लिखा गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी चौदहवीं का चांद, गेटवे ऑफ इंडिया। इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया।

राजेंद्र कृष्ण की का लिखा ये नगमा था मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के गाए। फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम आपके लिए अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।

आई, जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा।

0: आप विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत सुनेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: ताजी ताजी सांसों के लिए ताजा ताजा ऑफर, विको वज्रदंती सॉफ्ट फ्लेवर का 40 ग्राम पैक अब सिर्फ 15 रुपए में।
2: विको वज्रदंती, दांत गुनगुनाए।
3: विको वज्रदंती।

0: रंगे बसंत।
1: नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, बच्चे की सरल और देश के प्रति अटूट प्रेम को दिखाता ये गीत हम सभी ने सुना है। मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, देश की संस्कृति और पहचान को दर्शाता ये प्यारा सा गीत। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं, देश के गौरव और संस्कृति की महानता को दर्शाता ये गीत। ये आह्वान करते हैं सभी गीत कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, इसकी माटी को नमन करते हैं। गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकली रचनाओं ने देश प्रेम को दर्शाया और कहा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो उतार ला जमीन पर।

की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। सचमुच शकील बदायूनी का लिखा ये गीत केवल एक गीत नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था। आंदोलन, उनकी कलम में हर वो रंग शामिल था जिसकी समाज को दरकार है। इन गीतों को सुनकर ही देश के जाबाज सैनिकों के खून में एक उबाल सा आ जाता था। शकील साहब द्वारा रचित ये गीत नए आशावाद को प्रस्तुत करने वाला जैसे देशभक्ति गीत ही बन गया था।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अपनी मिट्टी और अपने देश के प्रति अथाह मोहब्बत ही हमें देशभक्त बनाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती जैसे कालजयी गीत रचने वाले गीतकार गुलशन बावरा कितने गहरे देशभक्त होंगे, ये गीत सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ धरती के गौरवगान से जुड़े गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गीतकार इंदिवर की कलम से निकला ये गीत भारत की संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। प्रेम, सत्य और एकता की बात करता गीत, भारतीयों का अपनी जड़ों पर गर्व करता ये गीत, अपनी मातृभूमि से प्रेम करने का आग्रह करता गीत। इंदिवर साहब के गीतों की तासीर आज भी मोहब्बत बिखेरे हुए है, लेकिन जब उन गीतों से मिट्टी की खुशबू आने लगी तो जिंदगी और मौत का फर्क वो यूं समझा गए हमें। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जब

गीतकार साहिर लुधियानवी ने भी मातृभूमि को माँ की तरह प्यार किया। उनकी कलम ने भी देशभक्ति की भावना के बीज बोए। घनघोर अंधेरे के बीच भविष्य की चमकीली किरणें बिखेरते रहे उनके कालजयी गीत। साहिर ने दुनिया को बहुत कुछ कह दिया। वे लिखते हैं, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कहते हैं, सच्चा देशभक्त अंजाम की परवाह किए बिना सच बोलता है। वही साहिर गीतकार ने कहा, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क।

देश प्रेम और माटी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कोई इन रणबांकुरों से सीखे। अपनी मोहब्बत का इजहार एक शहीद ये कहकर करता है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना

100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। जंग के मोर्चे पर तैनात एक फौजी के जज्बातों को गीतकार कैफी आजमी ने बहुत खूबसूरती से कागज पे उकेरा। अगर ये गीतकार, ये शायर केवल इश्कबाजी पर ही अटके रह जाते तो शायद उनकी कलम ये विद्रोह कभी ना कर पाती, ये गीत कभी ना उकेर पाती।

प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई सूचना नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके चलते समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 15 तारीख तक समुद्र में ना जाए। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:30 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: अब सुनिए आज का अनमोल विचार।
1: सत्य का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन यही मार्ग हमें आत्मविश्वास, सम्मान और सच्ची शांति प्रदान करता है। झूठ से हम कुछ समय के लिए परिस्थितियों को बदल सकते हैं, लेकिन सत्य हमेशा अपना रास्ता बना लेता है। इसलिए जीवन में ऐसी सच्चाई अपनाइए जिसे कहने में भी गर्व हो और निभाने में भी संतोष।

ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस मातृ वंदना से।